91.2 MHz पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

91.2 MHz पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इं बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कून अपने पंदी।

91.2 MHz पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे,
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना है, मुझे

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है, समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने, इस प्यारे से सफर को आप सभी

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल फेक की तरफ।

दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार, 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। अब आप सभी सुनेंगे आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल के 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य, बड़ी कंपनियों को प्रदेश में बुलाकर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने की तैयारी। प्रदेश के 33 सरकारी स्कूल डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील होंगे, शिक्षा विभाग ने मांगी आवश्यक जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मार्च तक डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे, विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत। 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना खाद नहीं मिलेगी, कृषि भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल करवाना होगा। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखकर स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली का विरोध करेंगे। बीबीजी आरएमजी के में अब फर्जी हाजिरी पर लगेगी रोक, डिजिटल निगरानी के लिए एनएमएमएस ऐप का इस्तेमाल। प्रदेश की ग्राम पंचायतें 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी, 16वें वित्त आयोग की एनटाइट ग्रांट से होगी खरीद। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 1000 हिमाचली युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की ओर से अब तक 6 ओवरसीज प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें कुल 396 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 156 अभ्यर्थियों का विदेश में रोजगार के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं में से 68 युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रोजगार मिल चुका है, जबकि अन्य चयनित अभ्यर्थियों को विदेश भेजने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को प्रदेश से बाहर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इसके लिए बड़ी विदेशी कंपनियों और भर्ती एजेंसियों के साथ संपर्क बढ़ाया जा रहा है। विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी देने के लिए करियर काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। 33 सरकारी स्कूलों को डे बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील करने की योजना पर काम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का सर्वे और गैप एनालिसिस करवाने की तैयारी की है। इसके तहत स्कूलों में कमरों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं, भवन और अन्य आवश्यक संसाधनों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विभाग का कहना है कि पहले यह स्पष्ट किया जाएगा कि चयनित स्कूलों में पहले से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त निर्माण या संसाधनों की जरूरत होगी। कांगड़ा और मंडी के शिक्षा उपनिदेशालय से भी डे बोर्डिंग स्कूलों में बदलने के लिए आवश्यक जानकारी मांगी गई है। पहले चरण में 33 स्थानों पर नए डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति जारी की गई थी। अब इन स्कूलों को मौजूदा सुविधाओं के आधार पर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के खाली पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों के खाली पदों को मार्च तक भरने का प्रयास किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने से प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर से किसान आईडी के बिना किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। किसान आईडी बनाने के लिए कृषि भूमि का पूरा विवरण दर्ज करना जरूरी रहेगा। इसके लिए जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। खाद का वितरण भी इसी रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना है कि किसान को उसकी वास्तविक कृषि भूमि के अनुपात में ही खाद उपलब्ध हो। रवि सीजन से पहले खाद की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों को समय रहते अपना पंजीकरण करवाने की सलाह दी गई है। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अभी एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन जारी है। गांधी जयंती पर प्राथमिक शिक्षक एक दिन का उपवास रखेंगे। शिमला में चल रहे शिक्षकों के क्रमिक अनशन को रविवार को 64 दिन पूरे होने की जानकारी समाचार में दी गई है। शिक्षक स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े अपने विरोध और मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि उनकी मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है और सरकार को इस दिशा में निर्णय लेना होगा। वहीं शिक्षकों ने गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन का उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज करवाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
एनएमएम ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसमें कार्यस्थल की फोटो और स्थान संबंधी जानकारी भी रिकॉर्ड की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड कार्यस्थल से ही दर्ज किया जाता है। इससे अधिकारियों को कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक मौजूदगी की निगरानी में मदद मिलती है। विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य रोजगार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी अथवा अनियमित उपस्थिति की संभावना को कम करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली एंटाइट ग्रांट के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। पंचायतें इस राशि से अपने कार्यालयों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्नीचर की खरीद निर्धारित सीमा के भीतर ही की जा सकेगी और इसके लिए सरकारी वित्तीय नियमों तथा खरीद प्रक्रिया का पालन करना होगा। खरीद के दौरान वित्त बजट लेखे और लेखा परीक्षा से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होगा। विभाग की ओर से पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कई पंचायतों के विकास कार्यों के प्लान पहले ही पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। ऐसे में कुछ पंचायतों के लिए फर्नीचर खरीद की मंजूरी बाद में मिलने से योजना में बदलाव की आवश्यकता भी सामने आ सकती है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो।
3: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे,
4: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
8: असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना है, मुझे पढ़ना।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

ये जिंदगी में कभी भी। तो आज 29 सितंबर 2026 का दिन है दोस्तों। देखिए, ऐसा लग रहा था कि अभी तो महीने की शुरुआत हुई थी और अभी हम आखिरी दौर में पहुंच गए। बस यही है समय का दौर, बस चलते जा रहा है और हमें भी अपने साथ लेकर चल रहा है। तो हमें रुकना नहीं है, बस जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाना है और जो पल हमारे पास है उन्हें खूबसूरती से इंजॉय करना है। जी दोस्तों, तो आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये दिनचर्या उसी तरह से रहेगी, उसी तरह से समय आता जाता रहेगा, लेकिन हमें कैसे अपने आप को इसमें ढालना है, कैसे अपने दिन को बेहतर बनाना है, ये हमारे हाथों में है। जिंदगी के तीन जवाब, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी खामोशी ही सबसे सही जवाब होती है। हर परिस्थिति से लड़ना जरूरी नहीं, कभी चेहरे की मुस्कान भी बहुत कुछ कह देती है। और जब जिंदगी अंधेरे से गिर जाए तो उम्मीद की एक किरण ही बहुत होती है। जी दोस्तों, तो इस समय आप सभी को उम्मीद है प्यारे प्यारे से गीत संगीत की। तो आइए बातचीत के साथ साथ कार्यक्रम में मनोरंजन का सिलसिला भी आप सभी एंजॉय करने वाले हैं 11 बजे तक। जी दोस्तों, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ फिर से एक बार आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही प्यारा सा दोस्तों की दिल के मेहमान बन जाइए। तो हर जो भी अननोन पर्सन या एक अजनबी कहते हैं ना दोस्तों, कि एकदम से हमारी जिंदगी में एंटर हो जाते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही खास बन जाते हैं, तो उन्हें दिल के मेहमान जो है वो हम बना लेते हैं। तो ये दिल का मामला है दोस्तों, और दिल हमें कई बार बहुत मुश्किलों में भी डाल देता है। दिल बच्चों की तरह बिहेव करता है, मानता नहीं है, बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। और आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं दोस्तों विश्व हृदय दिवस। आज का दिन दिल के लिए जी। तो दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जो स्वास्थ्य से जुड़ी बातें होती है जो हमें जानना बेहद ज़रूरी होती हैं, जिस पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, खास करके हम खुद की बात करें। और कई बार अपनों से जुड़ी, अपनों मतलब कि जो हमारे लिए खास होते हैं, जो हमारी फैमिली पर्सन होते हैं, तो उनके लिए भी हम कई बार जो है वो बातें इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं छोटी सी बात है। लेकिन वो छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है कोई नहीं जानता। तो फिलहाल रुक करते हैं मौसम की ओर। तो इस समय दोस्तों मौसम की हम बात करें तो लगभग 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी धर्मशाला का मौसम तापमान जो है वो महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम विभाग का क्या कहना है वो भी हम जरूर जानेंगे, जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और खूबसूरत से गीत की ओर।

सुगीत से पहले नजर डालते हैं मौसम की और सबसे पहले डाल ही लेते हैं, जान ही लेते हैं कि मौसम विभाग का क्या कहना है और किस तरह से जो है अभी मौसम का हाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों वैसे तो विदाई की दहलीज पर बैठा है मानसून, अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन प्रदेश में सोमवार की हम बात करें दोस्तों, यानी कि पिछले कल की हम बात करें तो कई स्थानों पर बारिश का दौर जो है वो जारी रहा, जिससे प्रदेश के तापमान में 4 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है जी दोस्तों। तो ऐसे में हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि मॉनसून बिल्कुल विदाई के मोड़ पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी जो हम पिछले दिन की बात करें तो बारिश का दौर उसी तरह से जारी है और अब ऐसा लग रहा है कि हम सर्दियों में भी एंटर कर ही चुके हैं बरसात के बाद। तो ऐसे में थोड़ा सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है और इसके बाद 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रदेश में मुख्य रूप से जो है वो मौसम का साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में दोस्तों इसी तरह से फिलहाल मौसम अभी किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा दौर हो सकता है, जिनके लिए फसलों का काम तैयार हो चुका है, लेकिन जिनके लिए नहीं हुआ है शायद उन्हें अभी बारिश की ज़रूरत हो। तो फिलहाल ये थी मौसम की अपडेट। आईएसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल ने फिर याद किया मूवी का गीत आप सभी ने एंजॉय किया दोस्तों अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर एंजॉय कर रहे हैं इस समय आप सभी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बातचीत के साथ साथ इस प्यारे से सफर का रुख करते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर। जी दोस्तों, एशियन गेम्स जापान में भारत को कबड्डी का लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाकर लौटी धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की तीन बेटियों का सोमवार को धर्मशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा के साथ खिलाड़ी ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, पटाखे जलाए, फूल मालाएं पहनाने संग फूलों की बारिश करके खेल प्रेमियों ने जश्न मनाया। उत्साहित साइंस सेंटर की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों को कंधों पर उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जी दोस्तों, तो एक बार फिर से देश की बेटियों ने जो है वो हिमाचल का नाम, भारत का नाम जो है वो रोशन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अब बेटियां जो हैं वो अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा उन्हें अटेंशन और गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं ज़िंदगी में, अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं और अपने साथ साथ पूरे देश का नाम जो है वो रोशन कर सकती हैं। बस उन्हें ज़रूरत है फैमिली सपोर्ट की, समाज के सपोर्ट की। लेकिन आज बेटियां घर पर ही सुरक्षित नहीं हैं तो समाज तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच, मानसिक सोच जो है जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देती, यही कि इनका पहनावा कैसा है, इनका जो है तरीका रहन सहन का कैसा है, लोग चार बातें कहेंगे, क्या कहेंगे अगर बाहर जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि बेटियां अगर कुछ कर भी रही हैं, कुछ आगे बढ़ भी रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा उन्हें जो है नहीं सपोर्ट किया जाता कि आगे चलकर संभालना तो घर ही है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे यहाँ वहाँ धक्के खाने से, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम काम करेंगे, जब हम अपनी पहचान बनाएंगे, तभी जो है अपना स्टैंड जो है हम ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं आज के समय में सिचुएशंस ऐसी हैं कि अगले ही पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो कब हमें पूरी जिम्मेदारी जो है एक बेटी के ऊपर आ जाए या किसी पे भी आ जाए, तो उन्हें अगर जान पहचान होगी, अगर वो जानते होंगे, उन्हें नॉलेज होगा, वो बाहर अपने आप को संभाला होगा, तभी वो आगे जो है पूरी फैमिली को संभाल सकती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, एक बहू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं, तो वो पहले एक बेटी होती है। अगर बेटी बनकर उसे सपोर्ट किया जाए तभी वो बहू बनकर जो है फैमिली को संभाल पाएंगे। तो आइए इसी बातचीत के साथ, इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने एंजॉय किया ये गीत अभिजीत के आवाज के साथ, और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी जुड़े हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और दोस्तों, जैसे ही नए दिन की शुरुआत होती है, नए पल हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हर पल खास होता है ये तो आप सभी जानते हैं। तो कुछ लोगों की जिंदगी में नए मेहमान भी आते हैं, और ज़रूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी में कोई नए मेहमान जुड़े, कुछ पुरानी यादें भी उन्हें परेशान करती हैं। तो कुछ लोगों के साथ से जो है अपनों का साया छूटता है, मतलब हर किसी की अगर हम दिनचर्या की बात करें तो इतनी बड़ी दुनिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो खुश रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को भी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है भले ही उनकी ज़िंदगी

में कितनी भी परेशानियों क्यों ना चल रही हूँ, लेकिन दिखाने के लिए उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि दुख बताकर और ज़्यादा बढ़ता है, या क्या ही कि हर किसी को जो है अपने दुख में इन्वॉल्व करना। बिल्कुल सही बात भी है, कई बार जो है हम अपने दुख को शेयर करके ज़िंदगी के गमों को कम करते हैं, थोड़ा सा दुख कम होता है बांटने से। लेकिन कौन इंसान हमारे उस दुख को दुख समझे, ये हम नहीं जानते हैं। उस दुख का मजाक बनाए, 100 लोगों में उस बात को पहुंचाए, ये कौन ही जानता है। हम उस समय तो कह देते हैं बहुत विश्वास करके कि ये मेरी परेशानी है और तुम किसी और से मत शेयर करना, और ये तुम किसी और से शेयर मत करना करना करके ना जाने कितने लोगों तक बातें पहुंच जाती हैं। तो सोचिए कि जिस इंसान ने इस बात को आगे पहुंचाया, तो उसे थोड़ा सा अंदर से ये बात तो आनी चाहिए, ये आवाज़ तो आनी चाहिए कि यार मेरे पे किसी ने ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें शेयर की हैं, कुछ ख़ास पल मेरे साथ जो हैं वो बांटे हैं, और मैं इसे अपने तक सीमित रखूं। क्योंकि उस इंसान ने अपना दुख कम करने के लिए साझा की है, ना कि आपको आगे तक पहुंचाने के लिए। और जब हम आगे पहुंचाते हैं तो सिर्फ वैसी की वैसी बात नहीं पहुंचाते, उसमें हम 2-3 बातें खुद से जोड़ते हैं, उसे और अच्छा मतलब एक तरह से बना ठना के जो है ना दूसरे लोगों तक पहुंचाते, ताकि उनके इमेज पे सवाल उठें, लोग उनके बारे में बात करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ज़िंदगी है, और कब किसके साथ किस तरह का समय आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो कुछ पल बैठिए और खुद को भी समझिए, और अगर कोई आपके साथ अपना दुख साझा करता है, शेयर करता है, तो उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव है, और यही ज़िंदगी की असली जो कहते हैं ना दोस्तों जीत है, यही इंसानियत है। तो इस इंसानियत को कभी खुद से जाने मत दीजिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बिल्कुल दोस्तों, किसी को समझने की हमने बात की थी, किसी को जानने की हमने बात की थी। तो जान और समझ हम तभी पाएंगे जब हम किसी के साथ बैठकर उनकी बातों को सुनेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़्यादा इशू या बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो चल रही है नशे की। तो ऐसे में भी जो इस लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो इस आदत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, खास करके हम बच्चों की या युवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजंस ये भी हैं कि उन्हें बैठकर सुनने वाला कोई है ही नहीं, कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई अता पता नहीं। तो वो कहाँ अपने मन की बातें जो है वो साझा करें, कहाँ ना करें। कहीं बाहर करेंगे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें राह से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो ये फैमिली के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को या अपने आसपास के युवाओं को जो है वो किस तरह से उन्हें कॉपरेट करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं इस लत से बचाने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और क्योंकि ये तो ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं और ये तो हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आज होंगी कल नहीं होंगी या हो गई हैं दोबारा नहीं होंगी, ये चलती रहती हैं। जिस तरह से हमारी जो जीवन शैली चल रही है उसी तरह से ये बातें हमारे आसपास चलती रहती हैं, लेकिन हमें सतर्क सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य बैठक धर्मशाला में हुई और बैठक में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट स्टेडियम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके तहत पूरे स्टेडियम परिसर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने और ई टिकट व्यवस्था की तर्ज पर डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा हुई। बैठक में जो है प्रदेश में क्रिकेट को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जिला क्रिकेट संघों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। शुरुआती चरण में प्रत्येक जिला संघ को सप्ताह में 2 प्रशिक्षण शिविर लगाने और टूर्नामेंट करवाने के लिए 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे युवा खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अधिक अवसर मिल सकेंगे। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। महिला खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर, प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। जी दोस्तों, तो ये बेहद जरूरी है और बेहद खास है हम सभी के लिए, खास करके युवाओं के लिए एक प्रोत्साहित प्रेरणादायक जो है ये कदम है। तो इस पे हम जरूर बातचीत करेंगे, जरूर थोड़ी सी नजर और दौड़ाएंगे, अपनी जिंदगी से इसे रिलेट करना चाहेंगे स्पोर्ट्स को खास करके। लेकिन उससे पहले लेकर चलेंगे आप सभी को फिर से मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और बिल्कुल दोस्तों बहुत ही खास बातचीत के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ, कुछ खास जानकारियों के साथ जब सुबह की शुरुआत होती है दोस्तों तो पूरा दिन अच्छा जाता है और ऐसा लगता है कि मेहनत भी नहीं की और हमने अपने आप को अपडेट भी कर लिया। तो दोस्तों अपडेट करने की हम बात करें तो वैसे तो आज 29 सितंबर है, हम आज बहुत ही खास दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि हृदय से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं या उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन सतर्कता की बात करें दोस्तों तो आज के समय में हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आए दिन जो है वो साइबर ठग जो है वो नई नई तरकीबें जो अपना रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि हमारी सालों की या जिंदगी भर की मेहनत की कमाई एक ही सेकंड में कहीं खो जाए और हमें पता भी ना चले। तो सोचिए कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा शॉक जो है वो एक इंसान को लग सकता है। दिन रात मेहनत करके ना खाने का पता, ना हमारे सुख चैन का पता, ना रिश्ते नातों का पता, ना अपने मतलब अपनों का पता, सब कुछ हमने साइड में रखा है। किस लिए? पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और खूबसूरत बना सकें। बिल्कुल दोस्तों, तो इसी के चलते जो है आप सभी को बता दें कि अब एक ऐसी स्कीम जो है वो इन शातिरों ने अपनाई है कि एकदम से हो सकता है कि आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो, कुछ सेकेंड्स के लिए नेटवर्क चला जाए और आपको ऐसा लगे तो वो जो है वो उस नंबर पे अलग से सिम लेके जो है अपने ओटीपी वगैरह सारे उसमें फॉरवर्ड कर लेंगे और जिससे कि आपका सारा डाटा जो है वो उनके पास चला जाएगा और चाहे एफडी है, चाहे आपके जो भी सेविंग्स है वो धीरे धीरे जो है वो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और आपको ना कोई ओटीपी, ना कोई आपके पास कोई लिंक आएगा, क्योंकि अक्सर हमने यही सुन रहे हैं कि लिंक या ओटीपी से जो है वो बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। लेकिन अब ये नई स्कीम जो है, नया ट्रिक जो है इन लोगों ने अपनाया है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल दोस्तों, मेहनत की कमाई होती है, इसे हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते। तो सतर्कता के साथ आगे बढ़िए और अपनी मेहनत की कमाई को भी सेव रखिए। फिलहाल आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी एंजॉय कर रहे थे और 9:50 हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। समय थोड़ा सा बदलाव है समय में, तो आइए लेकर चलते हैं समाचारों की ओर। उसके बाद फिर से आप सभी जुड़ेंगे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ और इन प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ।
1: लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू, त्वरित और सुलभ न्याय पर जोर। वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तक बढ़ी और 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठक कल। लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर करेंगे चर्चा। अब समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चलान की राशि की

0: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ भावी आंदोलन का खाका तैयार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाना है। ऐसे में पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के आगामी सत्र में विपक्षी दलों के साथ मिलकर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग का प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के ढुलमुल रवैये के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लेकर देशव्यापी साझा विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बिंदल ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन और स्नेह हमेशा प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने इस भेंट को ऊर्जा और नई प्रेरणा देने वाला बताया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: मंडी जिले में केंद्र और राज्य सरकार की कृषि आधारित योजनाओं से मिल रहे आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से युवा नौकरी का इंतजार करने के बजाय स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपनी नियमित आय भी अर्जित कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
5: मंडी जिले के सुंदरनगर निवासी अंकित कुमार ने सरकारी प्रोत्साहन और स्वरोजगार की राह अपनाकर मशरूम उत्पादन को सफल व्यवसाय में बदल दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि आधारित योजनाओं से मिल रहे सहयोग और अपने परिश्रम के दम पर अंकित आज हर महीने करीब 20 क्विंटल मशरूम बेचकर लगभग 1.5 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। अंकित ने अपने सफर की शुरुआत महज 200 बैग से की थी, जो अब बढ़कर 7000 बैग तक पहुंच गई है। 12वीं तक पढ़े अंकित ने नौकरी का इंतजार करने के बजाय पहले मशरूम फार्म पर काम कर अनुभव हासिल किया और फिर कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से वैज्ञानिक प्रशिक्षण लिया। सीमित भूमि से अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग अपनाई। सुंदरनगर के बाद अब पंजाब के भरतगढ़ के पास भी नई इकाई स्थापित की है। कुंभ विकास योजना के तहत उन्हें शेड निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिली है। अंकित की कहानी युवाओं को संदेश देती है कि सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और मेहनत के सहारे स्वरोजगार की आत्मनिर्भरता की मजबूत राह बनाया जा सकता है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों के जल्द और आपसी सहमति से निपटारे के लिए मेडिएशन फॉर नेशन 3 विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वाधान में आयोजित ये अभियान हिमाचल में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण में चल रहा है।

ग्राम सभाओं की बैठकें होंगी। इन बैठकों में लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर चर्चा करेंगे तथा आवश्यक प्रस्ताव और सिफारिशें तैयार की जाएंगी। उप ग्राम सभाओं की

अभियान चलाया जा रहा है। अंबाला कैंट से शुरू हुआ ये अभियान केलंग होते हुए जालंधर तक चलेगा, जिसमें जवान करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अभियान के दौरान सेना के जवान पलचान, केलंग, पंडो और चौंतड़ा में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं को भारतीय सेना में करियर के अवसर, भर्ती की पात्रता, चयन प्रक्रिया और विभिन्न प्रवेश योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र

वर्षा। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को देंगे 5,33,00,000 की पुरस्कार राशि। हिमाचल दस्तक के शब्द है, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू, आज CWC बैठक में होंगे शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया ई चलान को बिजली बिल से जोड़ने पर विचार के दिए निर्देश। CWC की नई दिल्ली में बैठक, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे भाग। अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू, त्वरित और सुलभ न्याय पर जोर। वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तक बढ़ी और 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठक कर लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर करेंगे चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है इस समय आप सभी ने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। डेली रूटीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों इस खास बातचीत को, बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत संगीत को। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होता, बस हम थक जाते हैं। थक जाते हैं लोगों को समझाते समझाते, थक जाते हैं सबको खुश रखते रखते, और सबसे ज्यादा थक जाते हैं खुद को मजबूत दिखाते दिखाते। लेकिन याद रखना, बुरा वक्त आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, बस जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। आज मन भारी है तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन अपने सपनों से पीछे मत हटिए, क्योंकि हो सकता है जिस सुबह का आप इंतजार कर रहे हो वो सुबह बस एक ही कदम आपसे दूर हो। तो उस कदम की ओर बढ़ते जाइए, अपने सपनों की ओर बढ़ते जाइए। फिलहाल हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे से गीत की ओर। तो बिल्कुल दोस्तों, पहुंचाते हैं आप सभी तक कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों मनोरंजन और बातचीत का सिलसिला इस समय आप सभी ये इंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और दोस्तों जहां हमारी डेली रूटीन से जुड़ी बातें या जिंदगी से जुड़ी बातें हो ही रही हैं, तो एक और बहुत ही खास जानकारी की और रुख करना चाहूंगी। दोस्तों बहुत खास है क्योंकि खास करके महिलाओं के लिए सजने संवरने का बहुत शौक होता है, लेकिन हाँ फिर इस महंगाई की मार को देखकर थोड़ा मन को मारना पड़ता है, थोड़ा सा मन को समझाना पड़ता है। लेकिन शादियों की बात करें तो शादियों में कहते हैं ना, जो देना है वो तो देना ही पड़ता है, चाहे जिस भी तरीके से खुद को मजबूत करके इस स्टेप को उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों सोने चांदी के दाम में सोमवार को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,133 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया है। 1 किलो चांदी 9,297 रुपए सस्ती होकर 2,23,000 रुपए पर आ गई है। जी दोस्तों, सितंबर में अब तक 28 दिनों में सोना 8,000 और चांदी 14,000 सस्ती रुपए हुई है। 31 अगस्त को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,48,000 रुपए पर आ गया है। जी दोस्तों, कहते हैं ना कि ये चीजें ऐसी हैं, इसमें अगर 1,000 की भी कमी हो तो बहुत एक सुकून सा मिलता है, तो ये तो बहुत आगे की बात है। तो ऐसे तो हम ना भी लें, ऐसे डेली वेयर की हम बात करें वो तो शौक के तौर पे पहनते हैं, लेकिन जहाँ बात करें एक माँ बाप जब बेटी को विदा करते हैं तो उन्हें यही चिंता सताती रहती है कि अगर नहीं दिया तब भी उन्हें कहीं जो है ससुराल में उन्हें टॉन्ट ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। क्योंकि कहने सुनने को तो हम कह देते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं लेना चाहते, हमारे घर पर सब कुछ है, लेकिन जब बेटी बहू जो है उनके घर पहुँच जाती है तो फिर वही बातें कि दिया कुछ तो है ही नहीं, मतलब कहीं ना वो बातें सुनाई ही जाती हैं। कहने देखने सुनने के लिए हम कहते हैं अपनी सोच को बदल लिया है, लेकिन हम उस सोच से आगे अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जहाँ दहेज के लिए या ये देन लेन के चलते जो है बेटियों को शिकार बनाया जाता है और उन्हें जिंदगी खोनी पड़ती है। दोस्तों तो इस पे भी हमारे लिए जागरूक होना, अवेयर होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धन दौलत से बढ़कर जो है हमारी ज़िंदगी है। पैसा आज है कल नहीं है, क्या ही पता है, ज़िंदगी का कोई

भरोसा नहीं है। तो इसलिए इंसानों की कीमत को समझिए, ना कि पैसों की या ये सोने चांदी की। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं आज के दिन में। जी दोस्तों, 29 सितंबर 2026 का दिन है और हृदय दिवस जो है वो आज के दिन आप सभी मना रहे हैं। दोस्तों, हृदय रोग केवल वृद्धों तक ही सीमित नहीं है। आज दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी बीमारियां युवाओं को भी तेजी से प्रभावित कर रही हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, दीर्घकालिक तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा और मधुमेह का अनियंत्रित प्रबंधन है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर ये जागरूकता बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नियमित स्वास्थ्य जांच, हृदय स्वस्थ जीवन शैली और जोखिम कारकों के शीघ्र प्रबंधन के माध्यम से कई हृदय रोगों से बचाव किया जा सकता है। जागरूकता और समय पर कार्रवाई जो है वो जीवन बचाने और हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, जब भी हम बीमारियों की बात करते हैं या किसी भी तरह से, तो अक्सर हम दवाइयां खाने से टलते ही हैं, लेकिन हम ये ज़रूर करते हैं कि घरेलू नुस्खों को सबसे पहले अहमियत देते हैं। या तो कई बार ऐसा होता है घर की, अगर जिन पे जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं की ही बात करें, ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों की ही बात करें, तो क्या होता है अक्सर कि हम अपनी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसी छोटी मोटी सी बात है और ठीक हो जाएगी। हल्के से हम मेडिकल स्टोर से जो भी दवाई हमें लगता है कि नहीं, ये वाली दवाई हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, तो हम मेडिकल स्टोर से जाके उस दवाई को खा लेते हैं और कुछ समय के लिए राहत भी मिल जाती है और फिर हम उसी रूटीन में शुरू हो जाते हैं, उस भाग दौड़ में शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे लिए ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी अगर हमें दिक्कत हो रही है, तो जितना कोर्स होता है सबसे पहले तो उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि दवाई ज़रूर एक हफ्ते में असर कर जाती है अगर एक महीने का आपका कोर्स है, लेकिन पूरी तरह से उसे ख़त्म करने के लिए जो एक महीने का कोर्स है, तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। ये नहीं कि अब राहत मिल गई है तो बीच में ही उसे छोड़ दिया, हो सकता है दोबारा आपको उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो बीमारी फेस करनी पड़े। तो इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की बात है दोस्तों, और अगर हम स्वस्थ हैं तो तभी हमारे आसपास जो हैं अपने हैं। जिस दिन हम बीमार हो गए उस दिन अपने भी साथ छोड़कर चले जाएंगे और हम फिर सिर्फ और सिर्फ पछतावा जो है लेकर बैठे रहेंगे। तो ये है कुछ खास बातें और इससे जुड़ी और भी हम बातें करेंगे। तो ये एक हमारी सोच रहती है अक्सर कि ये बीमारियां जो है वो बुज़ुर्गों को फेस करनी पड़ती हैं। पहले के समय में ऐसा होता था क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन जो था वो अलग तरह का था, लेकिन अब जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदली है, हमारा खाना जो है वो उसकी कोई रूटीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से आज छोटे छोटे बच्चों को भी इन बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमें इनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं इन बहुत ही खास बातों के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ।

दोस्तों 91.5 दोपहिका हर्ट्स पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जी दोस्तों 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा सा और बहुत ही खूबसूरत सा रहता है आप सभी के लिए, ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारी बातें और ढेर सारा मनोरंजन आप सभी तक पहुँचता है बिना मेहनत किए, बिना समय की बर्बादी किए, है ना, कितनी खूबसूरत सी बात। तो आइए दोस्तों इसी बातचीत को आगे की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन जानकारी की ओर। दोस्तों धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का 15वां संस्करण 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक डल नड्डी झील के समीप तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज में आयोजित किया जाएगा, यानी कि आज से। दोस्तों उत्सव के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को सहायक आयुक्त उपायुक्त कांगड़ा विवेक चौहान की अध्यक्षता में आयोजकों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, और बैठक में जो है वो बिजली, पेयजल, साफ सफाई, परिवहन, कानून एवं व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को जो है वो दिए गए। जी दोस्तों, तो जब हम फिल्म की बात करें तो एक तो होती है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए, लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी भी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें ज़िंदगी में जीना सिखाती हैं। ज़रूरी नहीं है पूरी फिल्म, लेकिन हाँ फिल्म में कुछ एक छोटी छोटी सी ऐसी बातें या कुछ एक बात भी अगर आपको मोटिवेट कर जाए तो वो फिल्म हम कह सकते हैं कि नहीं वाकई में अच्छी है। लेकिन कुछ तो ऐसे ही बनाई जाती हैं हुड़दंग के लिए कह सकते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन हाँ अपना अपना तरीका है हर किसी का। तो जहाँ फिल्म की बात हो रही है दोस्तों, तो हाल ही में जो हनुमान अंश की हम बात करें, इस मूवी ने काफ़ी धमाल जो है वो मचाया है, चाहे हम फ़ोन में इंस्टाग्राम पे रील्स पे देखें, जहाँ भी देखें बच्चों के सर पे सवार है इस मूवी का भूत। तो बिल्कुल जानते हैं आखिर इस मूवी में क्या खास बात है। दोस्तों फिल्म महान आध्यात्मिक संत नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज ही भी कहा जाता है, कि शुरुआती जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित एक भावनात्मक व धार्मिक ड्रामा है। जी दोस्तों कहानी की शुरुआत लक्ष्मण नाम के एक छोटे से लड़के से होती है, उसकी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ का निधन हो जाता है। लक्ष्मण को जब बड़े लोग ये बताते हैं कि उसकी माँ भगवान राम के पास चली गई हैं, तो वो मासूमियत से ये मान लेता है। वो सोचता है कि अगर माँ तक पहुँचना है तो उसे भगवान राम को खोजना होगा, और राम तक हनुमान जी पहुँचा सकते हैं। इसी गहरी खोज और बेचैनी में वो कम उम्र में ही अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद उसकी लंबी यात्रा मंदिरों, जंगलों, नदियों और गांव से होकर गुजरती है। इस दौरान वो भूख, अकेलेपन और कठिनाइयों का सामना करता है। धीरे धीरे उसकी निजी पीड़ा सार्वभौमिक करुणा में बदल जाती है। वो भूखों को खाना खिलाना, दुखी लोगों को शांत करना और मानवता की सेवा करना सीखता है। वर्षों के आंतरिक संघर्ष, मौन और निस्वार्थ प्रेम के चमत्कारों के बाद वही बालक लक्ष्मण आगे चलकर महान संत नीम करोली बाबा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। फिल्म में आगे 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डॉक्टर भोसले जैसे किरदारों के साथ बाबा के जुड़ाव और उनके आशीर्वाद के संस्मरणों को भी दर्शाया गया है। और इसी बातचीत के चलते अगर हम बात करें एक और मूवी की दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कुछ प्रेरणादायक कहानियां जब हमारे बीच आती हैं तो वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है, और हम हिमाचल के लोग हैं और हमारे लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं से बढ़कर शायद ही कुछ है। तो वहीं संस्कृति की बात करें, हिमालयी संस्कृति की बात करें, तो फिल्म खूंटा, जी दोस्तों हिमालय संस्कृति, देवास्था और एक बदलते हुए पहाड़ की एक भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानी है। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म महिला की कहानी है जो आध्यात्मिक रूप से हिमालय की एक पवित्र नदी से जुड़ी हुई है और अपने लापता पति का इंतजार कर रही है।
उसका गांव धीरे धीरे एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां आस्था, यादें और प्रकृति मिलकर उन सच्चाइयों को उजागर करती हैं, जिनका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस फिल्म में महासु महाराज की आस्था स्थानीय पहाड़ी संगीत, नाटी और देवता के गीतों के माध्यम से पहाड़ की मिट्टी और उसकी अनकही कहानियों को पर्दे पर उतारा गया है। तो ये है फिल्म खूंटा की कहानी। जी दोस्तों, और जहाँ बात करें हम हनुमान अंश की, तो उस मूवी ने तो वाकई में सच में बच्चों से लेकर बड़ों तक एक अलग ही उत्साह जो है वो भर दिया है। तो आइए, इस मूवी की बात हो ही गई है, और जब इस मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन कहें, गीत कहें, जिसने सभी को जो है रील्स बनाने पर मजबूर कर दिया, तो हम अपने कार्यक्रम को कैसे उससे दूर रख सकते हैं। आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से ब्रेक की ओर।

आपको एक पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर ये भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले भोले बम भोले।
1: बिल्कुल दोस्तों, खो गए ना आप भी इस बहुत ही प्यारी सी धुन में। तो बस यही खुमार है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है समाया हुआ है और बहुत कुछ सीखने को भी। अब आपका भी मन कर रहा होगा कि दोस्तों इस मूवी को देख ही लिया जाए, तो बिल्कुल देखिए और अगर सीखने को कुछ मिलता है तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में ना कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जहां हमें सीख नहीं मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी छोटी चीज़ से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिल जाती है, छोटे से बच्चे से भी हमें बहुत बड़ी सीख जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर हम इस घमंड के साथ, इस ईगो के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमें सब पता है, हमें दुनियादारी की पूरी समझ है, पूरा नॉलेज है, हमें एक छोटा सा बच्चा क्या ही सिखाएगा या एक छोटी सी मूवी क्या ही सिखाएगी, तो दोस्तों ये हमारा मन का वहम है। क्योंकि ज़िंदगी उसी को कहते हैं जो इंसान जो है ज़िंदगी में हर एक सिचुएशन में ढलना सीखता हो और उसे जो है ज़िंदगी से सीख लेना आता हो, है ना, एक छोटी से छोटी बात से। जीवन आश्चर्यों से भरा है, कुछ सुंदर कुछ कष्टदायक, लेकिन हर चुनौती एक सीख देती है और हर आंधी आपकी शक्ति को उजागर करती है। आगे बढ़ते रहें तब भी जब मार्ग कठिन लगे, स्वयं को सबसे सशक्त साहसी और लचीला स्वरूप बनाएं, अपनी यात्रा पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी ताकत पर विश्वास रखें और याद रखें आप इसे संभाल सकते हैं। यानी कि जिंदगी में आने वाली हर एक मुसीबत का सामना आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और खुद पे विश्वास जो है वो आपको नहीं टूटने देना है, फिर जिंदगी आपका साथ जरूर देगी। फिलहाल रुचिका इस समय आप सभी का साथ दे रही है कार्यक्रम में, बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचाकर और कुछ अपनी खट्टी मीठी सी बातें आप सभी तक पहुंचाकर। तो आइए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

बहुत मुश्किल है, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे दिल की बात हो, चाहे जिंदगी में ये जो इश्यूज चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, युवाओं से जुड़ी कुछ खास बातें अगर हम देखें, फिर चाहे वो युवाओं का जिद्दीपन हो या फिर उनका एक तरह से अपनी मनमानी करना हो, तो यहाँ समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय ये है कि पेरेंट्स और बच्चों में पता ही नहीं चलता पेरेंट्स कौन है, बच्चे कौन है, इस तरह से जो है ना एक रूटीन चल रही है आज के दौर में, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को भी थोड़ा, बच्चों को अगर डांटना है तो उन्हें पहले सोचना पड़ता है कि हमारे मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो नहीं डांट सकते हैं, नहीं मतलब सकते तो हैं लेकिन डांट नहीं पाते हैं, वो प्यार इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, तो तभी तो आजकल जो है पेरेंट्स टीचर्स तक को बच्चों को मारने नहीं देते हैं, डांटने नहीं देते हैं, जरा सा अगर हाथ उठा लिया तो फटाफट से वहाँ पहुँच जाते हैं कि भाई हमारे बच्चों पे क्यों हाथ उठाया। लेकिन कहते हैं कई बार डांट भी ज़रूरी होती है अगर चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएं। प्यार अपनी जगह है लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, उन्हें अपनी एक लिमिट्स में रहना सिखाना, ये एक अलग बात है, क्योंकि बच्चा करते करते और प्यार करते करते, और सबसे खास बात इकलौता जो आज के समय में टैग लगा दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे उस आड़ में भी बहुत ज़्यादा मनमानियां करते हैं और उन्हें पता है कि इकलौते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन गुस्सा करेंगे, दो दिन गुस्सा करेंगे, फिर अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ, हम हैं ही इकलौते और हमारे लिए वो ज़्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकते, तो अपना जो लूप हो एक तरह से कहते हैं ना कम वीक पॉइंट जो है बच्चों के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने अपना वीक पॉइंट बच्चों के हाथ में दे दिया तो बच्चे उसका नाजायज फायदा कब उठा लेंगे ये आप भी नहीं समझ पाएंगे, और उसके बाद फिर हम पछताते रहते हैं, सोचते रहते हैं उस बात को लेकर कि शायद समय रहते चीजों को संभाल लिया होता। मैं हर बार यही कहती हूँ दोस्तों कि हमें अक्सर समझ तभी आती है जब समय हाथों से निकल चुका होता है, सामने बातें हो रही होती हैं जब शुरुआत होती है लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं, उन बातों को गौर नहीं करते। तो ये तो कुछ जिंदगी से जुड़ी खास बातें हैं, लेकिन इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और लेकर चलते हैं आप सभी को एक जानकारी की ओर। दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को धर्मशाला में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रभात फेरी प्रातः 6 बजे कचहरी अड्डा स्थित हनुमान मंदिर के समीप से शुरू होगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बताया कि प्रभात फेरी में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, NSS स्वयंसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। भजन मंडलियों की सहभागिता के साथ प्रभात फेरी कचहरी अड्डा से पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल रोड तथा नगर निगम कार्यालय होते हुए गांधी वाटिका पहुंचेगी। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्प मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रभात फेरी के उपरांत गांधी वाटिका में सर्वधर्म प्रार्थना एवं कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ADC ने शहरवासियों से गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित प्रभात फेरी में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया। जी दोस्तों, तो ये थी बहुत ही खास जानकारी जो कि आप सभी तक पहुंचाई गई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अब आप सभी को लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: बिल्कुल दोस्तों, ना तो बुरा कहिए और ना तो बुरा सहिए, क्योंकि बुरा सहना भी गलत ही होता है। और अक्सर लोगों का कहना होता है अगर उनके सामने कुछ बुरा हो रहा है तो वो देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे होते हैं, ये कहकर कि ये औरों की बात है, हम क्यों ही इस जाल में फंसे, क्यों ही इस लड़ाई झगड़े का पार्ट बने। लेकिन दोस्तों बाद में हम फिर यही बात करते हैं कि काश उस समय लोगों ने हेल्प की होती, क्योंकि आज के समय में ना किसी के साथ अगर बुरा हो रहा होता है तो मदद करने से पहले फोन हाथों में होते हैं, और वो क्यों, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए। माना कि वीडियो जो है एक प्रूफ के तौर पे उस इंसान की हेल्प भी हो सकती है, लेकिन आपके वीडियो बनाते बनाते किसी की जान चली जाए तो उस बुरे का हिस्सा तो आप भी बन गए, तो क्यों ऐसे काम करने हैं जिससे कि किसी की जिंदगी का बुरा दौर बनकर आप आगे बढ़े। क्योंकि गिल्ट हमेशा मन में रह ही जाता है, कर्म अच्छे होंगे तो जिंदगी अच्छी बेहतरी की ओर जाएगी। तो दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। आइए फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और गीत की ओर, क्योंकि अब समय भी धीरे धीरे उस दौर की ओर जा रहा है जहां हमारा बिछड़ने का दौर एक मेन पॉइंट जो है वो पास आने वाला है। तो जाते जाते प्यारे प्यारे से गीत तो बनते हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।
1: भाई काहे का कांग्रेचुलेशन, यह जाली साथ से जान बची हुई है, चलो।

0: कभी भी पतले पड़े नहीं, दो चौकर थे लगे नहीं,
1: सीढ़ी चढ़ो तो सांप मिलेगा, लूडो का खेल यूं ही चलेगा।
2: नाखून चने चबाए हैं, दांत में कच्ची मक्की है,
1: मियाँ के बाल उड़े क्यों भैया,
3: बीवी इनकी शक्ति है।

दोस्तों 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और उसी के बाद कंटिन्यूसली एक और गीत आप सभी तक पहुंच रहा है, क्योंकि दोस्तों अब समय जो है वो हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सफ़र आप सभी ने ज़रूर एंजॉय किया होगा, ज़रूर मस्ती की होगी, और कुछ खास बातें जो आप सभी तक पहुँचाई हैं उन पे आप ज़रूर गौर करेंगे। कहते हैं कभी कभी खुद का भी शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए उन दिनों के लिए जब हालात बार बार हार मान लेने को कहते रहे फिर भी कदम रुके नहीं, उन लम्हों के लिए जब बहुत कुछ कहने का मन था मगर रिश्तों और सुकून के खातिर खामोशी चुन ली, उन आंसुओं के लिए जो किसी ने नहीं देखे और उन मुस्कानों के लिए जो टूट कर भी चेहरे पर सजाए। तो इन्हीं खूबसूरत से शब्दों के साथ दीजिए अनुमति दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना है, मुझे पढ़ना।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपने वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
7: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना

0: अरे सांप
1: क्या हुआ?
0: अरे
1: इसे क्या हुआ?
0: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
4: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

0: रीजन धर्मशाला से एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर। जी दोस्तों, आप सभी का अपना कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान।
1: और दोस्तों, हम मिलकर भरेंगे अपने इस हौसलों की उड़ान को आप सबके साथ मिलके। मैं हूँ आपके साथ रूमा, और मेरा साथ दे रही है इस उड़ान को भरने में
0: रुचिका। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, खासकर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास बातचीत करने वाले हैं वो तो आप सभी जान जाएंगे, पर उसके लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और रूमा जी, अब आप बताइए, दोस्त तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, क्योंकि बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी है, और आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप बताइए कि आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं।
1: रुचिका जी, हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं
0: जी,
1: लेकिन कहते हैं ना, जब माँ का हाथ सर पे हो तो फिर किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं माँ के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारी हर तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इतना अच्छा समाधान है, उसका नाम है माँ। तो इस बदलते मौसम में माँ की नसीहतों को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और श्रोताओं के साथ जुड़ने के ये जो मौके मिल रहे हैं, ये भी मुझे लगता है माँ का ही आशीर्वाद है।
0: जी बिल्कुल, जहाँ माँ का आशीर्वाद हो वहाँ फिर किस बात की कमी है दोस्तों, क्योंकि माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। अपने बारे में वो बाद में सोचेंगे, पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो सबसे पहले, सबसे आगे खड़ी मिलेंगे आपको। जैसे अब हम मौसम की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि मौसम बदलने का समय आ गया है, तो वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं कि बच्चों को कैसे सेफ रखना है, कैसे इस मौसम में बचा कर रखना है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां भी घर आती हैं, और उन्हें दस्तक देने से कैसे रोकना है ये माँ एक भली भांति से जानती है।
1: कितना अच्छा लगता है ना रुचिका, जब घर में हम वापस जाते हैं काम से थके हारे, तो माँ अपने सारे दिन भर की थकान भूल के हमारी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती है। और जब कभी हम घर में जाए और माँ हमें ना दिखाई दे, तो कितना खालीपन, कितना सूनापन उस घर में दिखता
0: है। बिल्कुल, एक बार बस चेहरा दिख जाए सारी थकान दूर हो जाती है, और चेहरे पे एक अलग सी खुशी जो है वो छलकती है, क्योंकि माँ के बिना ये संसार ही अधूरा है दोस्तों।
1: पूरी दिनचर्या हमारी माँ के ऊपर निर्भर करती है। हम इतने बड़े हो गए हैं तब भी हम अपनी माँ का सहारा ढूंढते हैं हर चीज में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, क्या हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि वो कितना सहती है हमारे लिए, कितनी तकलीफें हमारे लिए झेल के हमें इस दुनिया में लाई, और उसके बाद भी हमें सहेजने में, हमें संवारने में वो अपना पूरा वक्त लगा देती है, लेकिन खुद के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना उन्हें देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा ध्यान रखने में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं, अपनी खाने पीने को भूल जाते हैं, अपनी दिनचर्या की जो रूटीन है, खुद की सेहत को वो भूल जाते हैं ध्यान रखने, और हमारे लिए वो कुछ भी कर जाती हैं। फिर चाहे किसी से लड़ने की बात हो, चाहे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये मेरे बच्चों का अधिकार है, तो वो आपको डट कर खड़े वहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत खास बात है ये। तो
1: वैसे भी रुचिका, मुझे तो जब मेरी माँ का हाथ सर पे घूम जाता है ना, तो दुनिया भर की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, कोई डर नहीं रहता, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण में जो सबसे अहम रोल है ना, वो एक माँ का रहता है
0: जी।
1: और मैं सच मानूँ तो मैं माँ के साए में खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर कोई भी आंच आने से पहले वो ढाल बन के खड़ी हो जाएगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चों से बढ़कर माँ के लिए कुछ भी नहीं होता है।
1: और तो फिर मुझे लगता है कि कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना माँ के लिए एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनाया जाए।
0: जी जरूर दोस्तों, क्योंकि बातचीत तो हम शुरू कर देते हैं ना, पर आप सभी जानते हैं कि बातचीत तो हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, पर हम आपका ध्यान जो है वो नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से इस गीत के साथ, और ये सभी उन प्यारी प्यारी माओं के लिए, बच्चों की तरफ से, हमारी तरफ से।

बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है रुचिका आपने और सच में मन प्रसन्न हो गया है। तो रुचिका एक बात मैं ये करना चाह रही थी, अब माँ की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी माँ ने हमें इस दुनिया में लाने के लिए कितनी पीड़ाएं कितने कष्ट झेले हैं, ये जब जाहिर है जब हम खुद माँ बनी तो हमने देखा है कि और सच कहूँ तो माँ की अहमियत उसी दिन अच्छे से समझ आई थी जब मैंने खुद अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तब मुझे अपनी माँ का वो पूरा स्वरूप अपने सामने आ गया था कि मेरी माँ ने कितने कष्ट झेले होंगे। लेकिन रुचिका माँ बनना मुझे नहीं लगता बहुत

0: आसान है, कितनी तकलीफ एक महिला एक बच्चे को जीवन में लाने के लिए झेलती है, और ये सब जग जाहिर है, सभी को पता है। लेकिन क्या जब हमें बच्चे को जन्म देने के लिए तैयारी कर रही है, अब गर्भावस्था के दौरान ये सब चीजें झेल रही है, तो क्या माँ को भी वो सुकून मिल पाता है या वो देखभाल मिल पाती है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है?
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर मैंने पहले भी कहा ना कि हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो एक माँ जो है वो कभी नहीं भूलते कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है, मेरे परिवार को क्या जरूरत है। तो वहां पर ये हमारा दायित्व बनता है, और खासकर हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था की, तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए पहले तो कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं।
0: हम अपने दोस्तों को बताएंगे, बिल्कुल, माँ बनना अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा काम है। एक महिला बहुत सारी शारीरिक बदलाव के साथ साथ बहुत सारी मानसिक तकलीफें भी झेलती है और शारीरिक पीड़ा भी झेलती है, और अपने बच्चे को जन्म देती है। और एक माँ के ऊपर ये दायित्व भी रहता है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, तो उसको भी एक स्पेशल देखभाल की जरूरत होती है। एक महिला का अधिकार है कि उसे गर्भावस्था के दौरान जो उसके विशेष अधिकार हैं, उसको दिए जाएं, उसकी पूरी तरह से देखभाल की जाए। तो रुचिका जी, आज का हमारा विषय यही है कि गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं के क्या अधिकार हैं, और उन अधिकारों की हम सब कैसे मिलकर रक्षा कर सकते हैं।
1: जी,
0: वैसे भी आपको पता है रुचिका जी, एक जो माँ होती है वो बच्चे के लिए बहुत ही सेंसिटिव रोल होता है उसका, बहुत ही प्रोटेक्टिव भी होती है। तो गर्भावस्था के दौरान भी अगर हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उस माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो एक बहुत ही स्वस्थ शिशु को एक माँ जन्म दे पाएगी और उसका अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे भी रुचिका जी, आपको पता है, सिर्फ जन्म देने के बाद ही माँ का रोल खत्म नहीं हो जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: और माँ की जिम्मेदारियां बच्चे को जन्म देने के बाद और भी बढ़ जाती है। उसको संभालना है, उसको फीडिंग करानी है, उसको स्वस्थ भी रखना है, साफ सुथरा भी रखना है, इतने सारे काम होते हैं। और जब प्रसव के बाद उसके शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, बहुत सारी दुर्बलताएं आती हैं कि अकेली माँ उस बच्चे को नहीं संभाल पाती है, और घर में हमारी जो बहनें हैं, माएं हैं, वो उस माँ की मदद करती हैं।
1: जी,
0: लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी महिलाओं को उनके गर्भावस्था के जो दौरान जो अधिकार है उनका पता नहीं होता है। तो क्यों ना आज हम इसी विषय पे बात करते हुए अपने बहनों को भी जागरूक करें, अगर कभी गर्भावस्था के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन समस्याओं से वो कैसे निपट सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने बारे में भूल जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सभी बातें बाद में है, सबसे पहले जो है हमारे लिए अपना आप है। क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को ही अस्वस्थ कर लेंगे इन सभी बातों के चलते, तो हम परिवार को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो क्या क्या इस दौरान, जैसे कि रूमा जी ने बताया कि प्रसव के दौरान या फिर गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं के क्या क्या अधिकार रहते हैं, उन अधिकारों के बारे में जानने के लिए दोस्तों आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। तो आज हम वही बातचीत करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, या आप उन अधिकारों का लाभ जो है इस अवस्था में ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा के
1: जी, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दोस्तों मेरे हौसलों की उड़ान।
0: सबसे पहले तो रुचिका जी, महिला के खान पान पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और इस संदर्भ में आपको पता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी नीति बना रखी है। जब भी गांव में किसी भी महिला की प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आशा वर्कर के माध्यम से उसका पंजीकरण कर लिया जाता है, और साथ के नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में उस महिला के लिए पौष्टिक आहार जो है वो उसको दिलाया जाता है। समय समय पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आशा वर्कर जो है वो उस महिला के घर में जाती हैं, समय समय पर उसको टीकाकरण हुआ है कि नहीं, उसको कैल्शियम, आयरन या जो भी जरूरी उसको डॉक्टर ने जो दवाइयां दे रखी हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर भी होती हैं, तो डॉक्टरी परीक्षण के दौरान अगर उनको किसी हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो आशा वर्कर आके समय समय पर चेक करती हैं कि उनको वो सप्लीमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनका टीकाकरण समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सबसे बड़ी जरूरत भी है, आपने देखा होगा जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका टीकाकरण का शेड्यूल जो है वो सिविल हॉस्पिटल में या किसी भी पास के डिस्पेंसरी में, जो भी नजदीक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे उसका पंजीकरण के साथ ही उसका टीकाकरण भी शुरू हो जाता है। और रुचिका, ये टीकाकरण बहुत जरूरी है माँ और बच्चे के स्वस्थ, जो बच्चा गर्भ में पड़ रहा है उसकी स्वस्थ ग्रोथ के लिए।
1: बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा रूमा जी कि महिलाओं को आशा वर्कर के द्वारा जो है घर घर ये सुविधा दी जाती है, तो ये हम सभी को जानना बहुत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं को जानकारी नहीं होती है इस बात की, और हो सकता है कि कोई ऐसे प्लेस पे है जहां पे वो गर्भावस्था में दूर नहीं जा सकते हैं या उन्हें जाने में दिक्कत है और उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं है ज्यादा, तो आशा वर्कर अगर उन्हें मना कर दे कि नहीं आपको इधर ही आना पड़ेगा और वो ये नहीं जानते कि ये हमारा अधिकार है कि हमें ये फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए, तो वहां पर वो महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती हैं।
0: बिल्कुल, और आशा वर्कर के माध्यम से, और जो आशा वर्कर है हर एक गांव में, जो हमारा 5 या 6 आशा वर्कर्स रहती हैं पंचायत की जनसंख्या के हिसाब से, और हर एक आशा वर्कर बहुत ही तन्मयता के साथ और जुड़ाव के साथ इस काम को अंजाम भी दे रही हैं। समय समय पर वो महिलाओं को जो भी स्वास्थ्य विभाग से निर्देश आते हैं उनकी अनुपालना भी करती हैं वो, और उनका मदद कर रही हैं। तो अगर कोई भी महिला हमारे घर में, अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो उसको आशा वर्कर के माध्यम से या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में भी अपना पंजीकरण जरूर करवाना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो उनको स्वास्थ्य से जरूरी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से और इनको पोषण अभियान के साथ जोड़ा गया है, हर एक महिला को उचित जो डाइट एक गर्भवती महिला को मिलनी चाहिए वो भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको मिल रही है। तो इस सुविधा का लाभ हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ और पूरक आहार जब महिला को दिया जाता है जब वो गर्भवती है तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा स्वस्थ होगा, और समय समय पर जब टीकाकरण होगा तो भी उसके बच्चे में किसी प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं नहीं आएंगी। इसी तरह से उनको किसी नजदीकी अस्पताल में समय समय पर डॉक्टर के जो दिए गए निर्देश होते हैं ना रुचिका, उनका जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम डॉक्टर के निर्देशों के साथ चलते हैं तो हमें बहुत सही जानकारी भी रहती है, समय समय पर हमारा जो गर्भ है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही है वो पता चल जाता है, और जो भी जानकारियां जो भी टेस्ट डॉक्टर्स लिखते हैं वो हमें जरूर करवाने चाहिए। और आपने देखा होगा गांवों में अक्सर ऐसा होता है कि अभी भी महिलाएं, मैंने बोलते हुए सुनी है कि हमारे समय में प्रसव ऐसे हो जाते थे, हम पूरा काम करते थे, सब कुछ करते थे और फिर भी नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी। तो ऐसा देखिए, हर एक वक्त की नजाकत भी होती है, वो भी समय अपना बहुत अच्छा था और ये भी समय अच्छा है, और अगर सरकार एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए गर्भ में ही अगर उसका ध्यान रखने की ओर हमें जोर दे रही है तो हमें इन सुविधाओं का जरूर फायदा उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, और ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये बातें सुनाई जाती हैं कि पहले के समय में हम काम भी करते थे, पूरा पूरा दिन काम करते थे गर्भावस्था के दौरान, और हमारे बच्चे जो है बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होते थे, उन्हें किसी भी बीमारी का जो है सामना नहीं करना पड़ता था। और अब के समय में अगर हम देखें तो पहले जब गर्भावस्था की अवस्था आती है तो पहले से ही बेड रेस्ट हो जाती है या फिर ऐसे कि काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, पर ज्यादातर देखा जाए ना जब गर्भावस्था के दौरान महिला जो है जितना वर्कआउट मतलब कि कर सकती है उतना करना चाहिए, जितना वॉक वो कर सकती है उतना करना चाहिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ध्यान में रखें,
0: डॉक्टर के निर्देशों का पालन तो जरूर करें।
1: बिल्कुल, और उसी के साथ जो है मतलब कि ये सब बातें जब आपकी फिजिकल जो मूवमेंट्स है वो होती रहेंगी तो उससे भी बच्चे को काफी ज्यादा जो है एक तंदुरुस्ती मिलेगी और एक एक्टिवनेस जो है उसे मिलती रहेगी।
0: वैसे भी ज्यादा समय तक अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करनी है तो रेस्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी परिस्थिति को बेहतर जानते हैं, और पहले समय में ऐसे होता था, घरों में डिलीवरीज हो जाती थी।
1: और पहले मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते भी थे, क्योंकि पहले बीमारी के नाम पता नहीं थे और जानते भी नहीं थे इन सब चीजों के बारे में,
0: सुविधाएं भी नहीं थी। और दूसरा एक चीज और मैंने देखी है कि पहले के समय में घरों में ही प्रसव करवा दिए जाते थे, जो जोखिम भरे होते थे। कई बार बच्चे की और मां दोनों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाती थी। और आजकल भी कई जगह गांवों में घरों में ही प्रसव करवा दिए जाते हैं। हालांकि आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो और भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो इस पर निगरानी रखती है कि किसी भी महिला को घर में प्रसव ना करवाना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो मैं तो अपने दोस्तों से ये कहूंगी कि उनको ऐसा करने से रोकें, क्योंकि एक माँ का जीवन जो है और उस बच्चे का जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है। वो किसी भी रिस्क में ऐसे ना पड़े, क्योंकि आपके समय में आपको हर प्रकार की सुविधा अस्पताल में मिलती है, और उन सुविधाओं का जरूर लाभ उठाएं और एक माँ के जीवन को खतरे में ना डालें। और बाकी तो आपको पता है कि कोई भी माँ और उसका बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब उनका आहार स्वस्थ रहेगा, संतुलित रहेगा। तो एक माँ के आहार को संतुलित रखें। उसमें कई बार होता है कि बहुत सारी महिलाएं रुचिका जी यही करती हैं, जो हमारी माएं भी करती हैं, कि खुद खा लेंगी बाकी बाद में देखेंगी। लेकिन गर्भवती महिला की जो डाइट है वो एक बच्चे के लिए भी उसने खाना खाना है। तो वैसे भी कई बार तो ऐसे भी मैंने देखा है कि महिलाएं ये कहती हैं कि मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, बच्चे को भी खाना खिलाना है, तो कई बार वो ओवर ईटिंग कर लेती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ओवर ईटिंग से भी बच्चे की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है, और बाद में फिर डॉक्टर्स को उनको बेड रेस्ट की भी सलाह दे दी जाती है या उनके खान पान में। और इस दौरान आज के समय में कई बार मैंने कई महिलाओं को सुना है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जैसी बीमारी हो गई है। तो ये भी चीजें हमारे गलत खान पान के कारण हो सकती हैं। इसके लिए भी डॉक्टर का उपचार जरूर लें, डॉक्टर से जरूर सलाह लें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उन चीजों का जरूर फॉलो करें। और इसी तरह से एक स्वस्थ जो बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं उसको दुनिया में लाएंगे। और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो माँ तो अपने आप बच्चे को देखते ही स्वस्थ हो जाती है। ये तो आपने देखा है कि जब हम घर में आते हैं तो हमारी माएं हमारा चेहरा देख के ठीक हो जाती हैं, और हम अपनी माँ का चेहरा देख के पूरे दिन की जो थकान है भूल जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमारे श्रोता
1: को ब्रेक देते हैं और अपने दोस्तों को लेकर चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और वापिस आते हैं दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी के साथ, इस प्यारी सी बातचीत के साथ।

0: दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। तो अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे, और ये बात तो हमने कर ली कि गर्भावस्था के दौरान जो है एक महिला को अपने खान पान के ध्यान जो है किस तरह से रखना चाहिए, कैसे अपनी देखभाल करनी है और किस तरह से जो है टीकाकरण करवाना चाहिए या घर घर में जैसे भी हमने बात की कि सुविधा जो है वो मिल रही है। अब ये बात करते हैं कि मानव अधिकार जो है वो किस तरह से है और इसके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों से बातचीत करें।
1: रुचिका जी, हर एक महिला का अधिकार है
0: जी,
1: अगर वो गर्भवती है और अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है तो उसे उस अधिकार का उपयोग करे। हर एक व्यक्ति का जीवन का अधिकार जो है वो बहुत ही सार्थक अधिकार है, जो हर एक महिला को अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए उसको सहायता करता है।
0: तो मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक माँ को कोई ये नहीं बोल सकता है कि अगर अब वो गर्भावस्था में है तो बच्चे को जीवन में ना लाया जाए या उसे कोई फोर्स नहीं कर सकते।
1: कई बार हमने पिछले कार्यक्रम में लिंग अनुपात की बात करी थी रुचिका जी, और इसी बात पे चर्चा हुई थी कि अगर गर्भ में लड़की है तो बहुत सारे लोग जो है वो गर्भ गिरा देते हैं
0: बिल्कुल
1: लड़के की चाह में, लेकिन एक महिला का ये अधिकार है और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको जीवन का अधिकार है। हम उससे उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं और ना ही किसी को ये अधिकार छीनने का हम हक देते हैं
0: जी।
1: तो जीवन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 2 यही बताता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो अपने बच्चे को खुशी खुशी दुनिया में लाए। सोनोग्राफी समय समय पर हॉस्पिटल्स में होती है, बच्चे के स्वास्थ्य की जांच का ही एक अंश है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा गर्भ में सही से ग्रो कर रहा है, उसमें कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, ताकि बच्चा जब दुनिया में आए तो उसमें किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना हो या किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या ना हो जाए कि बच्चा दुनिया में आए और एक मतलब वो अगर स्वस्थ नहीं है, हम यही सब चीजें देखने के लिए सोनोग्राफी करते हैं
0: बिल्कुल। और हम कई बार क्या होता है कि इसको गलत वे में लेके चले जाते हैं
1: बिल्कुल।
0: असल में ये जांच के लिए है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, पर अक्सर जिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है वो लोग इसका गलत फायदा लेते हैं।
1: नहीं होती है ये तो नहीं कहेंगे रुचिका जी, जानकारी सबको रहती है, जीने का अधिकार सबको है, जो गर्भ में है उसने दुनिया में आना ही है
0: जी।
1: लेकिन हम अपने लालच और स्वार्थ में आके

0: एक अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं, तो ये एक माँ का अधिकार है। अगर उसे कोई भी व्यक्ति, अगर कन्या भ्रूण अगर उसके गर्भ में पल रहा है और परिवार का कोई भी सदस्य उसे फोर्स करता है कि वो उसको गर्भपात करवा दे, क्योंकि उनको तो लड़के की चाह है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर महिला के साथ ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। बच्चे का जन्म, देखिए हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में जब आए हैं, जीवन और मृत्यु ये सब चीजें हम झेलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जीवन अगर ईश्वर के हाथ में है तो मृत्यु भी तो ईश्वर के हाथ में है। फिर हम अपने स्वार्थ में आके गर्भ में पड़ रहे बच्चे की हत्या कैसे
1: क्यों बन जाते
0: बिल्कुल रुचिका जी, तो मैं ये कहूंगी कि अगर ये महिला का अधिकार है, वो अपनी गर्भावस्था में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उसको लगता है उचित है वही सही कदम उठाए, लेकिन बेटे की चाह में गर्भ में अपनी बेटी का हत्या ना करे। ये एक जघन्य अपराध है, इसको रोकने के लिए हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको बढ़ावा ना दें। सिर्फ सोनोग्राफी इसीलिए करवाएं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि जांच का मतलब यही है दोस्तों, अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसे ठीक किया जा सके, और अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है कोई शारीरिक या फिर कुछ भी, तो उसे वो पौष्टिकता जो है वो पहुंचाई जाए माँ के थ्रू, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उसका हम गलत जो है उस वे में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने लालच में ये भूल जाते हैं कि हमें एक जो माँ है उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चे की जान तो हम ले ही रहे हैं, पर साथ ही साथ एक माँ के इमोशंस को भी हर्ट कर रहे हैं, और एक माँ से जब बच्चा छीनता है तो उसे कितना दुख होता होगा।
0: जी रुचिका जी, ये तो हमने बात की उस बच्चे की जो अभी दुनिया में आया है
1: जी,
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में माता पिता को गर्भपात करवाना पड़ता है
1: जी।
0: ऐसी कंडीशन में हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसी में करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, कई बार अनचाहा गर्भ अगर है तो उसके लिए भी माता पिता गर्भपात के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उचित रास्ते से ही, माध्यम से ही जाना चाहिए। और किसी भी महिला को, अगर अनचाहे गर्भ को भी महिला अगर नहीं गिराना चाहती है तो उसके लिए फोर्स उसको नहीं करना चाहिए। कई बार मेडिकल जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी महिला को बच्चे को टर्मिनेट करवाना पड़ जाता है, तो वो भी एक उचित लीगल प्रावधानों के तहत आकर ही हमें सरकारी अस्पताल में ऐसा करवाना चाहिए, ताकि महिला का जीवन जो है वो जोखिम में न पड़े। आप जानती हैं कि कई बार कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि महिलाओं को किसी भी वजह से, वो चाहते नहीं है माता पिता की गर्भपात हो, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में हमको गर्भपात करवाना पड़ जाता है, तो इसके लिए सरकारी अस्पताल में या किसी भी निजी अस्पताल में भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उचित देखभाल में करें, ताकि एक महिला का जीवन खतरे में ना पड़ जाए। गाँव में अप्रशिक्षित दाइयों से या किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह का जोखिम वो ना उठाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने। तो दोस्तों अब आप भी समझ चुके होंगे, और खासकर महिलाएं अच्छे से समझ चुकी होंगी कि एक महिला का पूरा पूरा अधिकार है गर्भावस्था की अवस्था में, कि अगर कोई उनके साथ ऐसे फोर्सफुली जांच के लिए या फिर किसी भी तरीके से उनको फोर्स करते हैं कि हत्या के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, तो वहां पर एक माँ जो है आवाज उठा सकती है, उसका पूरा पूरा अधिकार है, उसकी सहमति होनी जरूरी है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है।
0: रुचिका जी काफी देर हो गई है, हमारे दोस्तों ने कोई गीत नहीं सुना, तो क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी जरूर, मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक प्यारा सा गीत हो जाए, क्योंकि हमारे दोस्त भी वेट कर रहे हैं, तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की तरफ, और फिर से वापिस आते हैं इसी प्यारी सी बातचीत के साथ।
2: मैं कभी...

0: रुचिका जी, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है आपने हमारे दोस्तों को, और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो रुचिका जी, आपको पता है गर्भावस्था में महिलाओं के और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो कानून की ओर से उनको दिए गए हैं
1: जी।
0: और इसमें से सबसे पहला अधिकार तो ये है कि गर्भवती महिला के साथ ना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्यस्थल पर। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर अस्थायी तौर पे थोड़े समय के लिए हम बीमार हो जाते हैं, मेल या फीमेल कोई भी ऑफिस में, तो उनके साथ नियोक्ता जो है वो थोड़ा सा
1: भेदभाव जो है दिखाने लग जाते हैं, व्यवहार जो है उनका बदल जाता है।
0: बदल जाता है, जैसे कई जगह पे ऐसे काम होते हैं कि उनको वजन उठाना पड़ता है, या फिर इस तरह का काम है कि शिफ्टों में काम करना पड़ता है या इस तरह का, तो ऐसी जगहों पे महिलाएं भी काम करती हैं। और महिलाओं को जब इस तरह की परिस्थिति आती है, जब वो गर्भवती है, तो जो नियोक्ता हैं वो उनके साथ भेदभाव अपनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि महिला जो है वो खुद ही नौकरी छोड़ के चली जाए। लेकिन महिलाओं के लिए ये अधिकार है कि उनके साथ कार्यस्थल में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और जब नियोक्ता को पता चल जाता है कि उसकी कोई कर्मचारी गर्भवती है, तो उसके साथ उससे भारी काम नहीं लिया जाता है, उसका इस तरह के काम उसको नहीं करवाए जाते हैं। अगर ऑफिस में कार्यस्थल में सीढ़ियां चढ़ने उतरने का ज्यादा काम है, तो उसको इस तरह से बैठने की जगह दी जाती है जहाँ पे उसको इस तरह का कोई वजन उसके स्वास्थ्य पे ना पड़े, उसके काम पे ना पड़े। साथ ही साथ उसको ज्यादा भारी भरकम काम नहीं दिए जाते हैं। और गर्भावस्था के जब तीसरा चरण आता है, तो तीसरे चरण में उनको इस तरह का काम दिया जाता है कि वो एक सेफ जगह पे बैठ के उस काम को कर सके। इस समय में उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई भी महिला के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों रूमा जी ने, क्योंकि अक्सर हमें ये बातें देखने को मिल जाती हैं। भले ही हम अपनी सोच को कितना भी बदल लें, पर घूम फिर के हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं इन छोटी छोटी सी सोच पे। क्योंकि अक्सर होता है कि जब महिला गर्भवती होती है, तो आप सभी जानते हैं कि एक महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है वो कितना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी हरकत हो जाए तो उन्हें कितनी दुख का सामना करना पड़ सकता है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो है उनकी जिंदगी में आ सकती हैं। और एक महिला की जिंदगी में प्रेशर जो है वो बहुत चीजों का रहता है।
0: बिल्कुल, और कई तरह के भेदभाव इसमें रुचिका जी शामिल है, जैसे कि उन्हें नौकरी से कई बार जो है नियोक्ता उनको इस वजह से नौकरी से निकाल देते हैं कि वो गर्भवती हैं और काम नहीं कर पाएंगी प्रॉपर ढंग से, या फिर उनके साथ जो कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, कई बार होता है ना कि अगर ये महिला काम नहीं कर पा रही है तो उसका काम किसी और को दे दिया जाता है, तो वो भी उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और किसी भी कारण से काम बंद करने पर या छुट्टी लेने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर व्यक्ति महिला, वैसे भी आपको पता है कि मैटरनिटी एक्ट जो है वो महिलाओं को प्रसव के बाद जो है अब तो 6 महीने की छुट्टी महिलाओं को दी गई है, तो कोई भी जो नियोक्ता है वो महिला को प्रसव के बाद भी काम पे जल्दी आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जब वो गर्भावस्था के दौरान होती है तो उसको नौकरी से नहीं निकाल पाते हैं। कई बार एक और चीज देखने में आती है कि कहीं नियुक्ति के लिए कोई महिला जाती है और वो गर्भवती है, हालांकि वो अगर वो प्रशिक्षित है, नियोक्ता के सभी मानदंडों को अगर वो पूरा करती है, तो इस वजह से उसको उस नौकरी से वर्जित नहीं किया जा सकता है कि वो गर्भवती है। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस तरह के भेदभाव सहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर उनके वेतन में कटौती करनी शुरू कर दी जाती है। तो कोई भी जो नियोक्ता है, कोई भी एम्प्लॉयर है, वो महिला का वेतन इस वजह से कम नहीं उसको दे सकता कि वो गर्भवती है, उसके वेतन और उसके भत्तों में कटौती नहीं कर सकते हैं। और गर्भावस्था के बाद प्रसव के उपरांत भी देखभाल के लिए जब वो 6 महीने की छुट्टी पे जाती है, तब उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। जो भी बोनस, जो भी भत्ते उसको मिलते हैं, वो उसको सभी वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे वो पहले मिल रहे थे। और अगर कोई नियोक्ता ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल, तो ये अधिकार है एक महिला के जब वो गर्भावस्था के उस पीरियड में है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे साथ कोई गलत ना कर सके, कोई गलत व्यवहार ना कर सके। क्योंकि अक्सर हम महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं हमें आदत होती है सहन करने की, और हम चुप रह जाते हैं, हम आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जानते हम होते हैं पर फिर भी हम डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें चार बातें और ना सुनाई जाएं या लोग हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पर अक्सर हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। कईयों को हो सकता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो उस समय में भी वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करने का वो कोशिश करती हैं। तो ऐसे में जो उनका जो ऑफिस स्टाफ है उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो उस महिला का सपोर्ट बने, उनकी हेल्प करें, बल्कि जो भी उन्हें जरूरत है वो आप जरूर पूरी करें, उनके काम में हाथ बटाएं। ऐसा नहीं है कि उनका जो काम है वो आप किसी और को दे दें, क्योंकि ऐसे में उनके मन पे जो है एक भेदभाव वाली जो बात है वो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल, अपनी जो गर्भावस्था को है वो एक तरह से इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर देगी कि इस गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ गलत हो रहा है।
1: रूमा जी, तो हम बात कर रहे हैं जब गर्भावस्था में कोई भी महिला होती है तो जब उनके साथ कार्यस्थल में जो भेदभाव होता है तो उस भेदभाव का सामना कैसे करती हैं या उसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? अगर ज्यादा से ज्यादा तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि वो भेदभाव जो है वो ना हो, भेदभाव ना हो, पर अगर फिर भी कोई उनके साथ वो भेदभाव कर रहा है तो उसके लिए वो किस तरह से आवाज उठा सकती हैं, क्या वो कदम आगे ले सकते हैं?
0: बिल्कुल रुचिका जी, बहुत ही सही क्वेश्चन है आपका ये। किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार का कार्यस्थल पर भेदभाव होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, और स्पेशली अगर गर्भवती महिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपने नियोक्ता के साथ जो भी एम्प्लॉयर है उसको लिखित में एप्लीकेशन दे सकती है। अगर वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कार्मिक विभाग में या रोजगार कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, अगर वेतन में कटौती होती है या उसके भत्ते रोक लिए जाते हैं कि वो गर्भवती है इस वजह से, या फिर उसको गर्भावस्था के दौरान कहीं पे भी दूर उसकी स्थानांतरण कर दिया जाता है, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आती है तब भी वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। उससे गर्भावस्था के दौरान उसको बिना वजह के परेशान इसलिए करा जाता है कि उसका काम किसी और कर्मचारी को करना पड़ रहा है, या उसको गर्भावस्था के दौरान भारी भरकम काम करने को दे दिए जाते हैं, या अगर टूरिंग जॉब है उसकी और उसको जगह जगह भेज दिया जाता है, तो महिला कार्मिक विभाग में या रोजगार कार्यालय में जाके शिकायत दर्ज करवा सकती है, या फिर अपने एम्प्लॉयर को भी लिखित में शिकायत दे सकती है। और जब भी वो शिकायत लिखित में देती है अपने एम्प्लॉयर को या कहीं भी, तो उसमें उसके साथ क्या हो रहा है वो पूरी डिटेल उसको उसमें लिख के देनी होगी। वो कार्यस्थल पे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं है, जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको जरूर लिख के देना होगा। उसके बाद ही जो नियोक्ता है वहाँ पे भी वो अपनी औपचारिक जो भी उसने शिकायत करी है उसके ऊपर वो संज्ञान लेके उसकी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी महिला को इसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है कि वो गर्भवती है और काम को नहीं कर पा रही है, तो वो कोर्ट में जाके किसी वकील के माध्यम से भी अपना दावा दायर करके अपनी उस नियुक्ति को रिस्टोर करवा सकती है, दोबारा से उस नौकरी के लिए जा सकती है। जो भी वेतन भत्ते उसके इस वजह से काट लिए गए हैं वेतन में, या किसी भी वजह से कटौती कर ली गई है कि गर्भावस्था के दौरान उसने पूरी सक्षमता के साथ काम नहीं किया है, तो वो वेतन भत्ते भी वो कोर्ट के माध्यम से ले सकती है।
1: जी रूमा जी, तो अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आगे बातें करते जा रहे हैं और ब्रेक जो है हम नहीं ले रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, गीत के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, कोई भी बात जब तक मनोरंजन ना हो तो काम का मजा नहीं आता है।
1: जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को आप सभी के साथ 91.2 MHz से।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: मेरे हौसलों की उड़ान
0: जी। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। रूमा जी, हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, तो अब बात करते हैं प्रसव के दौरान जो एक माँ को बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से उसके लिए अधिकार है, कैसे वो अपने कार्यस्थल में भी अपने लिए जो है एक मतलब कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर सकते हैं।
1: रुचिका जी, गर्भावस्था के दौरान महिला को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उचित खान पान, उचित टीकाकरण, समय समय पर जो भी सप्लीमेंट लेने होते हैं वो जरूरी है। उसके बाद बात आती है प्रसव की, तो प्रसव के दौरान भी महिला को विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो जब भी प्रसव का समय आए तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ही प्रशिक्षित डॉक्टर की निगरानी में, प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में डिलीवरी करवाएं, ताकि महिला और बच्चे की जान जोखिम में न पड़े। किसी भी गांव में किसी भी दाई का, अनट्रेन दाई के निगरानी में प्रसव नहीं होना चाहिए। और प्रसव के बाद भी महिला को काफी सारी देखभाल की जरूरत पड़ती है, आपको पता ही है। और ऐसे में अगर हम उस महिला को प्रसव के बाद एकदम से ही उसको 20, कई बार होता है कि हमारे गांव का इतना बोझ होता है कि हम 20-21 दिन होते हैं और महिला के ऊपर फिर से सारी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं
0: जी।
1: वो छोटे बच्चे की देखभाल के साथ साथ घर का चूल्हा चौका हर एक चीज करना शुरू कर देती है, और उसका अंजाम ये होता है कि थोड़े ही समय बाद बहुत सारी शारीरिक बीमारियां उसको, शरीर कमजोरियां उसको घेर लेती हैं, और फिर ना तो वो खुद का ध्यान खुद से रख पाती है अच्छे से, ना परिवार की देखभाल कर पाती है और ना बच्चे की।
0: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी रूमा जी, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं ना, इनसे देखा नहीं जाता है कि यार हम बैठे हैं और बड़े जो हैं वो काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहा है, तो मुझे भी हेल्प करवानी चाहिए। पर उस समय तो बोलते हैं ना, हमें वो चीज जो है रियलाइज नहीं होती है,
1: हमें खुद ही ये ध्यान रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: अगर हमारा परिवार, हम स्वस्थ हैं तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को सही से उसकी देखभाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो उस समय अगर वो काम में ज्यादा ध्यान दे देंगी तो उसका जो है प्रभाव उनकी हेल्थ पर भी पड़ेगा और बच्चे के हेल्थ पर भी जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो और यही कारण है रुचिका जी
0: जी
1: कि हर पूरे भारत देश में महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी प्रसव के बाद दी जाती है, ताकि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके और अपने बच्चे का भी उचित ध्यान रख सके
0: जी।
1: और कई बार अगर आप, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी जो नियोक्ता है वो महिला को प्रसव के तुरंत बाद 1-2 महीने के अंदर अब काम पे नहीं बुला सकते हैं, उनका अगर वो छुट्टी करती हैं तो उनको उनकी सैलरी नहीं काट सकते हैं
0: जी।
1: अब ये महिलाओं का अधिकार है कि वो 6 महीने तक वैतनिक अवकाश पे जा सकती हैं। ऐसे में ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन महिलाओं का सहयोग करें। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, अगर बच्चे को घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो 6 महीने की छुट्टी के बाद उनको अपने बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल का अतिरिक्त अवकाश मिलता है, लेकिन ये वैतनिक नहीं होगा, इसमें बिना वेतन के उनको विदाउट पे वो छुट्टी पे अपने बच्चे की देखभाल के लिए जा सकती हैं। कोई भी एम्प्लॉयर उनको इस वजह से काम से नहीं निकाल सकता है कि वो 2 साल तक काम से उपस्थित रही है। ऐसी स्थिति में भी वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। दूसरा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई रुचिका जी। अभी अभी DC कांगड़ा जी ने एक चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला में, जहाँ पे जो भी वर्किंग वुमेन है 6 महीने की छुट्टी काटने के बाद अगर इन महिलाओं को बच्चा को देखभाल करने के लिए घर पे कोई उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं मिलता है, तो वो काम पे अपने साथ इन बच्चे को ले आएंगी। जो भी समय के दौरान वो बच्चे जो हैं, उन महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में प्रशिक्षित कर्मचारियों की निगरानी में पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी अच्छे से देखभाल होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि क्योंकि हम भी देखते हैं कि कई बार हम बच्चे को घर में हमें मजबूरन छोड़ना पड़ता है, या फिर कोई घर में देखभाल करने वाला नहीं है तो हम खुद ही नौकरी छोड़ देती हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर जो है फैसला होता है एक माँ के लिए, क्योंकि एकदम से बच्चे को खुद से अलग करना और किसी ऐसे पर्सन के पास छोड़ के जाना जिन्हें वो ज्यादा जानते भी नहीं है, तो बहुत दुखदायी भी होता है एक तरह से, क्योंकि बच्चे से अलग रहना बहुत मुश्किल होता है अभी कुछ ही समय में।
1: बिल्कुल,
0: तो ये अच्छी बात
1: छोड़ना है। नौकरी को छोड़ देना भी अपने आप में एक तकलीफ देह होता है, कितने एफर्ट्स के साथ वो उस मुकाम पर पहुंची है, लेकिन कि अपनी मजबूरियों की वजह से उसको जब छोड़ने पे मजबूर होना पड़े तो दुखदायी होता है। तो ऐसे में मुझे ये बहुत ही अच्छी पहल लगी कि यहाँ पे एक महिला को काम करने की आजादी के साथ साथ वो अपने बच्चे का भी अच्छे से काम के दौरान देखभाल कर सकती है। तो ये मेरे को बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा चाइल्ड केयर सेंटर का। ये वर्किंग वुमेन के लिए है, अभी अभी इसकी शुरुआत जो हुई है वो डीसी कांगड़ा ने सिर्फ एजुकेशन बोर्ड में जो काम कर रही महिलाएं हैं उनके लिए किया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी पूरे जिला में इस तरह के चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे जो वर्किंग महिलाओं के लिए अपने आप में वरदान साबित होंगे, जो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी लालन पालन बहुत अच्छे से कर पाएंगी।
0: जी रूमा जी, तो मुझे लग रहा है कि आज हमने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं और बहुत अच्छी जानकारियां हमने अपने दोस्तों तक पहुंचा दी हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी एक गर्भवती महिला का इस तरह से ध्यान रखेंगे और अगर उन्हें जरूरत पड़े तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे, ना कि उनके साथ कोई भेदभाव करेंगे या फिर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। उनके सपोर्ट बनने की जरूरत है क्योंकि उस समय में उन्हें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से माँ हमारी कदम कदम पे सपोर्ट करती है तो उसी तरह से हमारा भी फर्ज बनता है कि एक होने वाली माँ को हम उसी तरह से लाड प्यार के साथ सपोर्ट के साथ उसका सहयोग करें ताकि वो भी एक स्वस्थ बच्चे को दुनिया में लाए और खुशी खुशी अपने इस कर्तव्य को वहन करते हुए वो भी आप सबके साथ अपनी खुशियां साझा करें।
0: जी दोस्तों, तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अपनी होस्ट एंड होस्ट रुचि का और रूमा जी को अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान।
1: लेकिन रुचिका जी, जाते जाते इनको अपना नंबर बता देते हैं।
0: जी जरूर,
1: कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी पेचीदगी या किसी भी इसी संदर्भ में आपको सहायता की जरूरत पड़ती है तो आप हमें बेझिझक लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431223। आप हमें कोई भी जानकारी साझा करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। बेझिझक आप हमें कॉल कर लीजिए, हम जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका निदान करने की कोशिश करेंगे और अगले कार्यक्रम में आपके उन बातों को आपके समक्ष लेके जरूर उनके समाधान लेकर आपके सामने होंगे।
0: जी दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अब अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी को। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। अब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।
2: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
3: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
2: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
6: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
0: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

0: अनु देशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ए तुहां सार यंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। तो तुहां सारे भी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी होने न कने सफर तुहां तक रहंदा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर 2 से 3 बजे तक के सफर तुहां तक रहना है कने तुहां सारियां भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ना है। पहले जिहड़ा श्रोता न से जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है
1: ना?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा ना क्या है जी?
1: अंधारी से बोला रे कने नाम मेघनाथ है कने आज धूप लगी है तुहां दे पाए
0: जी? ए तो भी धूप ही लगी हो ना जी?
1: हां आज मौसम बढ़िया
0: है जी, आज तो मौसम बड़ा ही सुहाना है ना जी।
1: जी
0: जी तो कुथी न कुथी मौसम भी अपना जिहड़ा रुख है से जरूर बदलता है ना जी।
1: बदला जी, जी,
0: जी, सर्दियों का जिहड़ा एहसास है से एक ही दिन जी यहाँ जो कराई था ना जी, जितनी भी कोटियां कोटियां जी जी कोटियां काटियां
1: सारी
0: जी आज फिर पाई लिया ना जी। जी जी मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना जी, खासकर धर्मशाला दे मौसम की गल करिए तो इतों के मौसम का तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता ना जी। जी जी तो मौसम के अनुसार अपना जेड़ा ख्याल है से भी रखना जरूरी है ना जी।
1: रखना पड़ना
0: जी जी
1: जी
0: तक
1: जी
0: तो किस तरीके ने रखना पड़ना थोड़ी देर? कई बार होता ना कि हाँ लापरवाही करना जेड़ा इसे शुरू करी दे कने ख्याल जेड़ा इसे नहीं रखते।
1: ठंड महसूस होंगी है तो गर्म कपड़े ना इस्तेमाल करा
0: जी जी,
1: और खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखा
0: जी। खाने पीने का ध्यान हाँ ज़्यादातर ताई रखी सकते चलो हाँ जेड़ा घरे का बनिया खाना है उस जो खाते ना जी।
1: हाँ
0: जी जी तो मेघना जी आज तो हम कुंदिया गीत सुनने जी।
1: अजान भजन सुनना है
0: कुंदिया जी।
1: इंतजार
0: करते रहते कि कल दिया 2 बजते न कने कल दिया तो हां इस कार्यक्रम कने जुड़ते न जी।
1: हां तो दो चार गप्पा भी हो जाएंगी कने कुछ फरमाइश भी हो
0: जी। जी जरूर जी
1: हाँ
0: जी तो धन्यवाद जी।
1: तो धन्यवाद
0: जी तशो तो दो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कन्ने तुहां तक ए गीत शुरुआत जेड़ा से यहाँ करा देना इस गीत कन्ने तुहां सारे भी इंजॉय करा कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने अज कने दिने दी जेड़ा खास बातचीत है या खास जेड़ा गलबात है से जरूर तुहां तक पहुंचानी है। 29 सितंबर 2026 की गल करिए तो अजकना जेड़ा दिन है मंगलवार का दिन जेड़ा है से तुहां अपने जेड़ा कम कार हैं सभी करा दे उन्हें ना करने कम कार तो करना बनता है ना क्योंकि आज का जोड़ा मौसम है सभी बड़ा प्यारा है। इसी कन्नै अगले जोड़ा श्रोता ने सह कन्नै जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्नै गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: हाँ जी आप कैसे हो
0: जी। हाँ भी ठीक ठाक हैं जी। तो हम कुछ ते बोला थे कि तो हम दा ना क्या है जी।
1: मेरा नाम प्रिया और शांत बोला थी
0: जी। तो प्रिया जी अगर तो हम पहाड़ी च गल बात करने तो बड़ा अच्छा लगना जी यहाँ जो भी करने तो हम जो भी ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। तो प्रिया जी क्या कर दे तो हाँ क्या काम कार कर दे तो हाँ।
1: काम कार ताली कुछ भी नहीं है
0: जी। अच्छा कुछ भी नहीं करा दे इस टाइम क्या काम कार करा दे तो हाँ।
1: इस टाइम अपने मन में रखा दी
0: जी। अच्छा जी जरूर एक माँ जेड़ा है से अपने बच्चे का भी ख्याल रखती है ना जी।
1: जी
0: जी घरे का भी ख्याल रखती है मतलब सारे का ही ख्याल रखती है ना जी।
1: जी
0: जी जी ता कदिया लगता तो तुम जो कार्यक्रम
1: अच्छा लगता है
0: जी। अच्छा रोज ही सुन दे।
1: हाँ जी
0: जी जी। ता मौसम कदे है जी रसाइन दा।
1: अच्छा धुप्पा लगी हैं
0: जी। अच्छा धुप्पा लगी हैं आज
1: जी।
0: जी ता प्रिया जी आज फरमाइश क्या है तो हंदी कुंदिया गीत सुनना है तो हाँ।
1: गणेश मिट्टी दा मनाया

0: जी जरूर ए भजन तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: आपका धन्यवाद
0: जी। अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कने भी गल बात। हेलो
2: हाँ जी सफी जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा
0: जी। क्या काम कार तुहां लगाया क्या करा दे तुहां अपनी रेडियो सेट दी आवाज पहले कम करी लेंगे जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी कर ली आवाज कम।
2: हाँ जी
0: जी तो पहले तो तुहां अपना परिचय दे दिया कि कुथु दे रहने वाले ने कने ना क्या है जी तुहां दा।
2: मैं दानू दे रहने वाला जी।
0: जी दानू दा रहने वाले तुहां कने ना क्या है जी तुहां दा।
2: मेरा नाम हरि सिंह है जी।
0: जी हरि सिंह।
2: हां जी
0: जी ता हरि सिंह जी तुहां बड़े दिन बाद मुझे लगा दा रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद किता ना जी।
2: बड़े बड़े दिन बाद
0: जी जी ता क्या काम कार छेड़ी पाया हा तो हाँ।
2: अब कार तक कुछ नहीं अपन फरमाइश नहीं की।
0: जी अच्छा फरमाइश नहीं की। वैसे रेडियो सुन दे थे।
2: हाँ रेडियो तो डेली।
0: अच्छा डेली सुन दे थे।
2: डेली सुन दे हाँ गुंजन दा साहब है रोज प्रोग्राम सुन दे।
0: जी जी तो गुंजन दे प्रोग्राम कदे लग दे तो हाँ जो
2: बड़े बढ़िया लग दे जी।
0: जी तो कितने बजे तो हाँ रेडियो सेट चिड़े से ऑन करीं दे।
2: रेडियो सेट मेरा तो दिन भी लगी रहता रात भी लगी रहना कुछ टाइम तो रात भी लगे रहता।
0: जी क्योंकि ये तो पूरा दिन रात चले रहता ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जी तो
2: ब्यागा तो हाँ भजन दिन दे भजन भी सुनने
0: जी
2: और प्रोग्राम राती गाने फिल्मी गाने सब सुनता रहता।
0: हिंदी गाने भी गजल बाकी सारे जेड़ा कार्यक्रम मन सेट समय दे अनुसार तो हां तक पूछ दे ना जी।
2: हां जी हां जी
0: जी ता
2: मैं तो घर आज नाराज हूं दो वाला राती पर रेडियो।
0: जी अच्छा कर यार परेशान हो जांदे कि राती भी रेडियो सुनते रहंदे।
2: हां जी हां जी
0: जी चलो मन लगाना है ना जी क्योंकि
2: कई बार नींदर नहीं पंदी तो रेडियो ला रख ले।
0: जी जी कई बार हां गीत संगीत सुनते ना ता जेड़ा नींदर है से जल्दी आ जांदी है ना जी।
2: हां जी हां जी
0: जी जी ता हरि सिंह जी आज हां जेड़ा खास दिवस बना देन से बना देन विश्व हृदय दिवस ना जी।
2: हां जी
0: विश्व हृदय दिवस आज हां जेड़ा से बना देन ना जी।
2: अच्छा
0: जी जी जेड़ा दिल दे संबंधित बीमारियां होनियां ते दे प्रति जागरूक होना कितना ज्यादा जरूरी है ना जी।
2: हां दिल दी बीमारियां दे तो जरूर जी,
0: जी, जी।
2: जागरूक होना पोना।
0: जी बीपी दी हां गल करिए ता बीपी ने इतनी सारी बीमारियां जुड़ियां ने कि हां एकदम ही हाई बीपी हो जांदा है ता कुठी ना कुठी बड़ा ज्यादा नुकसान जेड़ा है से पहुंचदा है ना जी। खान पान था से बिलकुल नॉर्मल था ना जी।
2: बिलकुल जी तो आज कल तेज मसाले हर चीज तेज है तेरे सब्जियां जी सब्जियां जी बीमारी है।
0: जी जी अहां दा जेड़ा खान पान है सही अहां थोड़ा देया चेंज करी त्या ना जी। उस तरीके ने जेड़ा खाना ऐसे खा दिया।
2: मैं तो बड़ा बारी खा दिया मेरी तो ताई ठीक है तो बनांदी तुड़का कड़छी चलां।
0: जी अच्छा कड़छी जी तुड़का जेड़ा ऐसे लगांदे थे।
2: चुल्ली
0: पर खाना जलू हम बनांदे ने तां तिदा भी अलग ही टेस्ट हुंदा है ना जी। मिट्टी दे बर्तन भी ज्यादातर मिट्टी दे बर्तन ही खाना
2: जी हां जी मिट्टी दे बर्तन बड़े यूज करते थे
0: जी जी
2: है ताइया साड़िया अंडू रखना दाल पाए रखनी सारा दिन रिझी रहनी कि चुड़का लाना दाल प्यार
0: जी देखा किस तरीके ने खाना जेड़ा है से बनांदे थे ना जी
2: हां जी हां जी
0: जी ता हरि सिंह जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनने जी अपनी पसंद च
2: वह गाना सुनना नारायण सिंह निका दिया
0: जी जरूर तुम्हारी जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा
2: थोड़ा जी धन्यवाद महाराज
0: जी तशु तुम तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या इसी कन्या हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो फिरी ते अगे बढ़ाना है कन्या तुम तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुंचानी है।

0: શ્રોતાઓ તો સારી અહીં સુન્યા એ કી તે ફરમાઈશ એ ફરમાઈશ અહાં તક પહોંચ્યું હોય વોટ્સએપ ને માધ્યમ ને શ્રોતા જેડા ને સે જરૂર અહાં તક મેસેજ દે થ્રુ ભી અપની જેડા ફરમાઈશ હૈ સે પહોંચાન દે ને કને પરવીનજી તક અહાં એ ફરમાઈશ પહોંચાઈ કને સે રહેણે વાળે ને પાલમપુર તે તો તુહા સારા ભી એ ફરમાઈશ જેડા સે એન્જોય કીતી હોની હૈ કને ઇસી કને અગલે જેડા શ્રોતા ને સે ભી જુડ ચુક્યો हाँ करने तो कर दें तीना करने भी गल बात हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी जी कैसे तो हंदा
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तो हम कुछ देर रहने आए ना करने तो हंदा ना क्या है जी
1: सुकड़े वेरे ने आई तो हमारा ना मेरा
0: जी क्या हाल चाल है जी सुकड़े आले आंदे क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे
1: क्या काम कार छेड़ना आज तो बने कही है
0: जी दाज बढ़िया मौसम है बढ़िया मौसम है जी बढ़िया मौसम है
1: हां जी
0: जी तो धौलाधार दे पहाड़ा पर बर्फ भी जड़े से पे ही है ना जी
1: हां जी हां जी हां जी हां जी
0: जी जी चल
1: तो ठंड है
0: जी
1: ठंड
0: जी जी ठंड हुई हो है
1: हां जी
0: सर्दी दा जेड़ा आगाज है से जरूर होई गया ना जी हुन
1: हां जी हां
0: जी जी तो जरूर अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखना है कने मौसम दे अनुसार हर चीज जरूरी हुंदी ना जी
1: हां जी यहां पर चल चल ना कोने पर ये पर चल चले आई ना
0: जी जी तो माया जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: ज्वाला माली है यार जी हमारे देवनी
0: जी मोड़े मोड़े जी जी जरूर ये भजन तो हाँ तक पहुँचाने दें जी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद जी मैडम
0: जी ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ सकते कने यहाँ करने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकते ते इसी करने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचान दे ना ये फरमाइश अहां तक पुजियो वै दाड़ी ते कने तीना दा नाव है मेघना जी तो जरूर तीना तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देना

कानवी दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो जरूर ये कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। कने गीत जेड़ा तुह तक कहाँ पहुँचाते थे जरूर है तुह तक पहुँचाना है। थोड़ा देया जिंदगी है, जिंदगी च उतार चढ़ाव जेड़ा न से चले रहेंदे तो उतार चढ़ाव हमेशा हाँ जो कोई ना कोई जेड़ा सीख है से जरूर दे करी जानते न। कने हाँ भी कुथी ना कुथी यही जेड़ा उतार चढ़ाव हैं तिना ते सीख भी जेड़ा से लेंदे न। तो जरूर हाँ मेघना जी तक ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देन तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत फिर हम वापिस आई ना अपनी गलबात उपर कने समय की ओर नज़र दौड़ाइए तो 2:30 कार्यक्रम चो इन तो सफ़र भी तुह तक चलिया है कने गीत संगीत जड़ा है सभी तुह तक चलिया कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफ़र चाह कने जुड़ा दे इसी कने गलबात जड़ा अज अहां करा दे न से करा दे न विश्व हिरदे दिवस के बारे च तो श्रोताओं जड़ा दिल की अहां गल करिए दिल की संबंधित जितनी भी बीमारियां न ते दे प्रति जागरूक होना कितना ज़्यादा जरूरी है। यही दिल है धक धक करा दा एक भी सैकेंड वास्ते जड़ा है से दिल अहां दा जड़ा है से नहीं रुकता है धक धक जड़ा है से करता रहता है कने अहां भी खुद जो फिट एंड फाइन रखी पाते हैं पर कुथी ना कुथी अहां अपनी सेहत जो भी नज़रअंदाज करना जड़ा है से शुरू करी देन। अगर गल बात करिए अपने खान पान की तो अहां अपना जड़ा खान पान है से बिल्कुल चेंज करी लिया बीमारियां भी इतनिया ज़्यादा न कि अहां कुथी ना कुथी कुसी जो बीपी है कुसी जो शुगर है या हर बीमारी जड़ा है से एक दूए अंदर अहां जो दिखने जो मिला दी फिर भी अहां इन बीमारियां जो जड़ा है से नज़रअंदाज करते न। कई बार तुह अपने घर च दिखते होने न कि बीपी हाई मरीज़ जड़ा मरीज़ है कई बार है भी उस जो बड़िया सारिया चीज़ा जो खाने जो मना किते होंदा फिर भी अहां यही बोलते न कि नज़रअंदाज अहां बड़िया सारिया चीज़ा जो करते न तो अपनी सेहत पहले फिर बाकी जड़ा काम

सैन, क्योंकि सेहत एक अमोल जिहड़ा अहां बोली सकदे उपहार है अहां वास्ते। तो ये अगर अहां दा ठीक नहीं होगा तो अहां कुछ भी नहीं है, कने अगर सेहत ठीक है तो बाकी सारे काम ठीक हैं। कई बार अहां काम दे चक्कर च अपनी सेहत जो भी नज़रअंदाज करते हैं, कदी कदी तो अहां घरे च भी दिखते होने न, चाहे से अहां दे माता पिता न, माता दी गल करिए तो माता भी अपने कम्मे च इतनी बिजी होंदी कि से अपना ख्याल भी रखना जिहड़ा से भूली आंदी, बाकी सारियां दा ही ख्याल रखती है पर कुछ ना कुछ अपना जिहड़ा ख्याल है से प्रोपर तरीके ने नहीं रखी पाती। तो ज़रूर काम भी करना है, काम दी जगह काम भी करा, पर सेहत जी सेहत है ताई अहां दे काम मन। तो इसी कन्ने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ाना है, कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां पहुंचानी है प्रिया जी तक, कन्ने से रहने वाले न रसां ते, तो जरूर तिना तक अहां ये भजन पहुंचा देना, कन्ने तुहां सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कार्यक्रम दा सफर तो हाँ तक लाइव चलिया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय करा देन कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर करा देने न कने माटी दी मेह कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है उस जो भी इंजॉय करा देने न क्योंकि इंजॉय तो करना बनता है ना अपने दा जेड़ा प्यार है से कुथी न कुथी अहां जो दिखने जो मिलता है या कुथी न कुथी झलकदा है तो इसी कने अहां फ्री ते अगे बढ़ना है कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अगर अहां मोबाइल फोन दी ओर नज़र दौड़ांदे न तो से अहां तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है सुनील कुमार जी कने से रहने वाले न कोठियां जलोट ते तो जरूर अहां सुनील जी तक ये फरमाइश पहुंचा देना कने तो हां सारे भी इंजॉय करा।

0: आंबुला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कने। इसी कने आहां फिरी ते वापिस आई हूं अपनी गलबात उपर कने तुहां सारे भी गलबात जो भी इंजॉय करा दे उन्हें न कने जेड़ा गीत संगीत है तुहानी जेड़ा फरमाइशा न तिना जो भी जरूर इंजॉय जेड़ा इसे तुहां करा दे उन्हें न गलबात अहां आज जेड़ा करा दे न दीदी पर नज़र दौड़ाना भी ज़रूरी है। विश्व हृदय दिवस जड़े से आज अहाँ बना देन कशो तो आज कने दूर की गलबात करिए तो अहाँ अपनी जेड़ा जिंदगी है से बड़ी ही भाग दौड़ भरी बनाई लियो। जेड़ा 10 मिनट वाला काम है से अहाँ 5 मिनट जड़े से करना चाहते न चाहे खाने की गल करिए तो खाने की जड़ा पहले भी मैं गलबात की थी कि खाने जेड़ा बदलाव है से अहां जरूर करी थे है कने अगर खाना ना बढ़िया है तो अहां झटपट क्या करा दे ऑनलाइन जेड़ा ऑर्डर है से करा दे कने घर बैठे जेड़ा खाना है से यहां तक पहुंची आता चाहे से फास्ट फूड है चाहे से कुछ भी है से कुथी ना कुथी यहां दी सेहत जो नुकसान जेड़ा है से पहुँचाता है। इसी कने तनाव की गल करिए कुथी ना कुथी अहाँ अगर ज़्यादा तनाव च रहेंदे न या ज़्यादा टेंशन च रहेंदे न तो सभी अहाँ दे जिहड़ा दिल पर जिहड़ा से असर पौंदा है दिने भी तो हर चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है कने अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। भाग दौड़ अहाँ कैदी वास्ते करा दे से तुहां जो सारे जो पता है कि अहाँ अपनी जिंदगी जड़े से भाग दौड़ भरी बनाई ली हो मेहनत करा दे मेहनत करना भी जरूरी है पर खुद वास्ते ही यहाँ करा दे ही अपनी फैमिली वास्ते करा दे तो जरूर सेहत ठीक तो सारे काम ठीक। इसी कने अगले जड़ा श्रोता है न से यहाँ करने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना करने गल बात। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हाँ जी ठीक है
0: जी। तुह कुथु दे रहने वाले ने कने तुहंदा ना के है जी श्रोताओं कोल जिहड़ा से जरूर डिस्कनेक्टेड हो यू तहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते ने कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते ना।

कानू दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना अपनी रेडियो दो शशि कहने कने अजकना जेड़ा दिन है से बेहतर खास है। 29 सितंबर दी गल करिए ता आज अहां जेड़ा खास दिन जेड़ा है से बना दिन कने तुहा सारे भी इस दिने जो खास तरीके ने बना दे होने कने कुथी ना कुथी अपनी सेहत का जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा दे होने न। विश्व हृदय दिवस जेड़ा है से अज अहां बना दे न कने तुहा सारे ही इसी कने एक कर्तव्य जेड़ा है से लै दे होने न कि अहां अपनी सेहत का ख्याल रखना है कने जेड़ा बाहरा दा बनिया खाना है चाहे फास्ट फूड है से नहीं खाना है। कई बार फास्ट फूड चलो जलू मन करता है तलू खाई भी लिया कने जलू पर अपनी सेहत का जेड़ा ख्याल है से जरूर रखना है तुहा क्योंकि दिल की सेहत अगर अहंदी ठीक रहेंगी ताई अहंदा जेड़ा प्यारा दिया दिल है ताई इन्नी फिट एंड फाइन रहना है। कने इसी कने तुहा सारे ही सुनिया ये गीत फरमाइश ये फरमाइश अहां तक पहुंची हो थी व्हाट्सएप के माध्यम ने पिना दा नाम है अश्विनी जी अनिल जी महक जी सुलेखा जी तो जरूर तिना तक अहां ये गीत पहुंचाया कने तुहां सारियां भी इंजॉय कीता। तो इसी कने अहां फिरी ते थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां तक पहुंचा देन माया जी तक कने तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये भजन फिर ते हम वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर कने फिर ते गलबात जो अगे बढ़ाने है क्योंकि कार्यक्रम च समय जेड़ा है सियाहाल थोड़ा दे है कने समय दे अनुसार चलते न कने ती जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे न ये फरमाइश हाँ पहुँचा दे न मनोज जी तक विजय जी तक परवीन जी तक कने से रहने वाले न सली ते।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तस्मय जिहड़ा है से जरूर अहां जो बोला दा है कि उन्होंने मति ले लिया, पर जाते जाते इस गाने दे बोल जिहड़ा न से 2 बोल तुहां तक पहुँचा देन। तुहां सारे ही इंजॉय करा।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा देश जीतेगा। टीवी हारेगा देश
1: जीतेगा। मिश्रा शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: तरफ क्यों जाता है क्या तुम्हें पता है? ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
1: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
2: जुबान।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
1: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
2: कहाँ रखेंगे टीवी?
3: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
4: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
0: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
0: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
0: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: मुझे उड़ना है।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

नमस्कार श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर टी रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊं सचिन कपूर हाजिर हो चुके हिंदी अपनी गप्पा। तैयार श्रोताओं, शुरुआत कर लेंदन कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता होगी।

इतना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजना और आऊ तुंद अपना होस्ट हो दो सचिन कपूर आइए शुदम कार्यक्रम जो हगो बड़न हुन दिन एक गीत

इतुंद अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊ तुंद अपना सचिन कपूरा कार्यक्रम तुंद अपना पसंदीदा कार्यक्रम तुंद रेडियो सेट मा इस वक्त चल रहा।

मजे चुकरदा उना कार्यक्रम हुन्ने है शतों बेहतरीन बेहतरीन मजेदार गीत के न सोत तो है इस वक्त वीडियो गुंजन में हुनु कर देन सचिन कपूर सोगे।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु गर्दन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु करदन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

श्रोतो उम्मीद करनो कार्यक्रम तुसु पसंद आवुना ते समय की असो बुझेगो तुसु सभी थो अलविदा लेने रा लेनो आ तुसु सभी थो अबे अलविदा श्रोतो हुंदे रे तुंदा अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पनारे।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एशियाई खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को मिलेगी पुरस्कार राशि। बीपीएल चयन में अब परिवार पहचान आधार नहीं होगा। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पाबंदी। पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा। ग्राम सभा में विकास कार्यों का रोडमैप तैयार होगा। इसी के साथ अब समाचार विस्तार से।

जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों पर प्रदेश सरकार धनवर्षा करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार पुरुषों की मॉडर्न पेंटाथलोन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सावन वरवाल को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की हिमाचली खिलाड़ियों पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी कर रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 4 करोड़, रजत पदक के लिए 2.5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। सरकार ने ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था की जानकारी दी है। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के चयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब परिवार पहचान के आधार पर किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या हटाने का फैसला नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ग्राम सभा द्वारा तय की गई पात्रता के आधार पर बीपीएल सूची तैयार की जाएगी। विभाग के अनुसार परिवार पहचान प्रक्रिया और बीपीएल सूची प्रक्रिया दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या अपात्र पाए जाने पर सूची से बाहर करने की प्रक्रिया ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर होगी। बताया गया है कि परिवार पहचान के बाद भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं बीपीएल पात्रता के लिए अपात्र पाए गए परिवारों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के लाहौल स्पीति दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन तथा मानव रहित हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, रिवर राफ्टिंग और अन्य संबंधित पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी निर्धारित अवधि के दौरान अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के आसपास अस्थायी और स्थायी रूप से लगाए गए दुकानदारों तथा अन्य संबंधित लोगों को अपनी व्यवस्थाएं हटाने और कब्जे वाले स्थानों को 30 सितंबर तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पुलिस और वन विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी 3,758 पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान गांव में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभाओं में गांव की स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को लेकर ग्रामीण अपने सुझाव दे सकेंगे। ग्राम सभा में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर भी चर्चा होगी। स्थानीय स्तर पर नशे की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता गतिविधियों और सामुदायिक भागीदारी पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में केवल विकास योजनाओं पर ही चर्चा नहीं होगी बल्कि पंचायतों में पहले से चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। विभाग ने पंचायत सचिवों और संबंधित अधिकारियों को ग्राम सभा की सूचना समय पर ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है ताकि गाँव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा
की जा सके। सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर ने पुरुषों के लिए सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 180 पद भरने जा रहा है। इसके लिए साक्षात्कार 3 अक्टूबर 2026 को एसडीएम ऑफिस कैंपस शाहपुर, 5 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय ज्वालाजी, 6 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय नगरोटा वगवा, 7 अक्टूबर को नूरपुर, 8 अक्टूबर को इंदौरा और 9 अक्टूबर को पालमपुर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 19 से 40 वर्ष की आयु के बीच 10वीं उत्तीर्ण व इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 18,500 से 24,000 रुपए प्रतिमाह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार

240 रुपए प्रति किलो, मछली बिना तली हुई 240 रुपए प्रति किलो, तली हुई मछली 340 रुपए किलो, और इसी प्रकार से जो है खाने की चीजों को पे भी निर्धारित शुल्क जो है वो लगाया गया है। उनका कहना है कि दूध लोकल सप्लाई 60 रुपए प्रति लीटर, उबला हुआ दूध लोकल सप्लाई 70 रुपए प्रति लीटर, पैक्ड दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 90 रुपए और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 360 रुपए बेचा जाएगा। सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें और निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश
1: जीतेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
6: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
8: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मुझे उड़ना

0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
0: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
4: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
5: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
6: जुबान।

अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से आरजे सचिन कपूर की ओर से नमस्ते है। हमारा प्यार भरा नमस्कार जो है वो स्वीकार कीजिए, आप सभी स्वीकार कीजिए, आप सभी श्रोता जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। 8 बजे तक गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का आनंद हम लेंगे। इस कार्यक्रम में हम सभी जितने भी श्रोता है वो बाखूबी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि बहुत सी जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाया जाए और साथ ही साथ गीत संगीत के साथ भी जो है वो आपको थोड़ी बहुत आपकी शाम जो है वो उसमें हम मिठास डाल सकें, ये कोशिश जो है वो हमारी अक्सर रहती है श्रोतों। तो कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां हमारे पास है श्रोतों, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं जानकारियों से रिलेटेड। और सबसे पहले तो धर्मशाला का मौसम आप तक हम साझा करेंगे, अपडेट करेंगे। 17 डिग्री सेल्सियस इस समय धर्मशाला का मौसम है, 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है श्रोतों। और नमी की बात करूँ तो 66% जो है वो नमी है इस समय धर्मशाला की। तो ये है इस समय धर्मशाला का मौसम जो हमने आप तक साझा किया, बयां किया है। तो आइए जी, कहते हैं ना कि वो गीत बहुत प्यारा भी है, बहुत याद भी आता है। और अक्सर मुझे इस गीत में जो है ये वाकई में ही लगता है कि इंसान के लिए सरहदें जो हैं वो बनाई गई हैं, है ना। किसी पंछी के लिए, पक्षी के लिए जो हैं वो कोई सरहद थोड़ी ना है। ये वाकई में ये गीत आप जितनी बार सुनोगे श्रोतो उतनी बार ही जो है वो वाकई में बहुत प्यारा लगता है। और इस गीत में बहुत कुछ जो है वो बयां भी किया हुआ है। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत सी जानकारियां हैं आप तक हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रोताओं आइए इस गीत का आनंद जो है वो ले लेते हैं कि देखिए पंछियों के लिए जो है, नदियों के लिए जो है वो कोई सरहदें नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो बहरहाल कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ।

आरसी वीडियो की सचिन कपूर, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ श्रोताओं, खुश रहना तंदुरुस्त रहना ही जो है, देखिए आपकी सेहत अच्छी है ना, और अगर आप खुश हैं तो लगभग दुनिया की मतलब सोच लो आपकी सारी दौलत आपके पास है। कुछ एक जानकारियों के साथ आप सभी को फिर से हम रूबरू करवाएंगे। कहीं ना कहीं ठंड का एहसास जो है वो ज़रूर हो रहा है श्रोतों अब। जी बिल्कुल, क्योंकि सितंबर के मध्यम से ही जो है वो सीज़न की पहली बर्फबारी के बाद जो है वो अंत में मौसम ने एक बार फिर से जो है वो करवट बदली श्रोतों। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले दो दिन से जो बारिश हो रही थी, और इस बारिश के बाद जो है वो ठंड भी बढ़ गई है श्रोतों। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर जो है वो सीज़न की दूसरी बर्फबारी थोड़ी सी जो है वो देखने को मिली श्रोतों। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर थोड़ी सी जो है वो ओढ़ी थी श्रोतों। बहरहाल आज जो है वो पूरा दिन काफ़ी तेज़ थरार धूप जो है वो रही श्रोतों। इसी के साथ श्रोतों कार्यक्रम में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। पालमपुर में एक बार फिर से जो है वो चिट्टा पकड़ा गया है श्रोतों। पुलिस थाना नहीं, पालमपुर के ये निवासी थे श्रोतों, और एक बार फिर से ये चिट्टे की जो होड़ है श्रोतों ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। वाकई में कितनी ही माताओं ने जो है वो अपने बच्चों को खो दिया है, कितनी ही बहनों ने जो है वो अपने भाइयों को खो दिया है, लेकिन ये चिट्टा रुकने वाला नहीं है। और इस चिट्टे को जो है वो हम रोक सकते हैं। आम जनता जो है, कहते हैं ना जनता जनार्दन है, जो आम जनता कर सकती है ना श्रोतों, आम जनता का ये दायित्व बन जाता है, ये फर्ज बन जाता है कि हम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का ये फ़र्ज है कि किस प्रकार से जो है वो चिट्टे को रोका जाए। इस प्रकार से कि कहीं भी आपको लगता है गली मोहल्ले में, चौराहे में, या कहीं भी आपको लगता है आपके घर में, खेतों में, बगीचे में, पार्क में, कहीं भी आपको लगता है श्रोतों कि कोई भी नौजवान जो है वो चिट्टे का सेवन या और किसी प्रकार का सेवन कर रहा है, किसी भी नशे का सेवन कर रहा है, तो तुरंत जो है वो पुलिस को कंफर्म करें या उनके माता पिता को जो है वो ज़रूर कंफर्म करें एक बार। तो चलिए जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। कार्यक्रम में हम बिल्कुल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे श्रोतों, और अगली जानकारियों के साथ भी आपको ज़रूर जो है वो रूबरू करवाएंगे श्रोतों। बहरहाल आप सभी को लेके चलते हैं कार्यक्रम में। आप प्यारे से गीत की ख्वाहिश जो है वो ज़रूर होगी आप सभी की, है ना। तो ये ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी करते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, और इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। आइए सुनाते हैं आप सभी श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत, आप सभी के रेडियो

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला दंडाधिकारी हेमराज भैरवा ने जिला कांगड़ा में मांस और पके हुए भोजन की वस्तुओं के अधिकतम मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। शतों इस संदर्भ में जारी एक अधिसूचना के अनुसार बाजार में आम जनता या उपभोक्ताओं को उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये दरें निर्धारित की गई हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी विक्रेता इसमें अधिक दर वसूल नहीं कर सकेगा। शतों मीट चावल भेड़ 600 रुपये प्रति किलो, मीट सुअर 300 रुपये प्रति किलो, चिकन और चिकन जो है वो साफ़ किया हुआ भी और चिकन 240 रुपये प्रति किलो, मछली बिना तली हुई 240 रुपये प्रति किलो, मछली तली हुई 340 रुपये प्रति किलो और चिकन जिंदा 180 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं। श्रोतों इसी प्रकार चपाती तंदूरी 9 रुपये प्रति चपाती है, चपाती तवा 7 रुपये प्रति चपाती है और पराठा अचार के साथ 30 रुपये प्रति पराठा है। आप सभी ये आप सभी के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी बहुत ज़रूरी क्योंकि ये डीसी साहब ने निर्धारित किए हुए हैं रेट। श्रोताओं सादा पराठा जो है वो 20 रुपये प्रति पराठा है, दो पूरी भटूरा चना दही के साथ 60 रुपये प्रति प्लेट है, चावल चपाती दाल सब्जी व कड़ी के साथ 100 रुपया, फुल डाइट चावल फुल प्लेट 60 रुपये प्रति प्लेट है, दाल साधारण 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 70 रुपये प्रति प्लेट है, सब्जी स्पेशल 80 रुपये प्रति प्लेट है, पालक मटर पनीर 110 रुपये प्रति प्लेट मीटर है, माफ़ करें पालक और मटर पनीर जो है वो 110 रुपये प्रति प्लेट है ना, मीट प्लेट 5 पीस के साथ 145 रुपये प्रति प्लेट है, चिकन करी 95 रुपये प्रति प्लेट और चाय 15 रुपये, समोसा 15 रुपये प्रति प्लेट है प्रति पीस है, माफ़ करें समोसा। चौमिन फुल प्लेट वेज 70 रुपये है, चौमिन हाफ प्लेट वेज 40 रुपये है, चौमिन फुल प्लेट नॉन वेज 80 रुपये है, चौमिन हाफ प्लेट नॉन वेज 45 रुपये, थुपका फुल प्लेट वेज 70 रुपये, थुपका हाफ प्लेट वेज 50 रुपये, थुपका फुल प्लेट नॉन वेज 80 रुपये, थुपका हाफ प्लेट नॉन वेज 55 रुपये, मोमो फुल प्लेट वेज 80 रुपये, मोमो हाफ प्लेट वेज 45 रुपये, मोमो फुल प्लेट नॉन वेज 110 रुपये और मोमो हाफ प्लेट नॉन वेज 60 रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि दूध लोकल सप्लाई 60 रुपये प्रति लीटर है, उबला हुआ दूध लोकल सप्लाई 70 रुपये प्रति लीटर है, पैकेट दूध सभी ब्रांड का जो है वो मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 90 रुपये तक और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 360 रुपये बेचा जाएगा। श्रोतों उन्होंने सभी दुकानदारों ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वह अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची जो है वो ज़रूर लगाएं, प्रदर्शित जो है वो ज़रूर करें और निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली करें। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी क्योंकि इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी के रेडियो सेट पर गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलेंगे आप सभी को क्योंकि अगीत संगीत जो है वो बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं चलिए लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, आप सभी श्रोताओं को जुड़े रहिएगा बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। गूंज अपनेपन की और गूंज आप सभी जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं आप सभी श्रोताओं की।

शुतो गूंज अपने बन की तो हमेशा रहेगी क्योंकि आप सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो ये गूंज सदैव रहेगी और यूं ही रहेगी। तो आप सभी बने हुए हैं इस समय हरदेव सचिन कपूर के साथ और आइए शुतो एक विशेष जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूँ। आइए एक विशेष जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं श्रोताओं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रोताओं, मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज प्रातः कांगड़ा जिला स्थित उनके पैतृक गाँव तियारा में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनकल्याण के लिए उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण और लोगों की सेवा के लिए मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा किए गए कार्य सदैव जो है वो याद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मा को जो है वो उनकी आत्मा को जो है वो शांति के लिए जो है वो उन्होंने प्रार्थना की है, शांति के लिए उनकी आत्मा जो है वो बिल्कुल शांति में रहे और सदैव जो है वो शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो है वो प्रार्थना की है श्रोताओं। तो चलिए हम भी इस चीज़ के लिए जो है वो प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्होंने शाहपुर विधानसभा के लिए, शाहपुर के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए जो है वो प्रत्येक हर वक्त जो है वो कार्य किया है श्रोताओं, और हर वक्त उन्होंने हमेशा वो तत्पर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। तो चलिए ये तो दौर है और ये तो चोला है जो हम सभी ने पहना है, ये एक न एक दिन इस चोले को जो है वो खोलना ज़रूर है और रास्ता तो हम सभी का तय है कि हम सभी ने जो है वो वापस ज़रूर जाना है। तो कर्म उनके बहुत अच्छे होंगे और हम भी अपने कर्मों को जो है वो अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं श्रोताओं, क्योंकि जाने का रास्ता जो है वो तय ज़रूर है और जाना भी हम सभी को है, ये भी 101% चीज़ें जो है वो तय हैं श्रोतों। आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को श्रोतों इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला कांगड़ा प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की संयुक्त टीम ने रविवार को बैजनाथ उपमंडल के अंतर्गत मुल्तान तहसील की ग्राम पंचायत पोलिंग के दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर झील का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। श्रोतों, निरीक्षण का उद्देश्य झील की वर्तमान स्थिति, आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों तथा आपदा जोखिमों का आंकलन करना था। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा एवं SDM बैजनाथ संकल्प गौतम ने स्वयं टीम के साथ लगभग 14 किलोमीटर लंबे कठिन और एवं दुर्गम ट्रैक को पूरा करते हुए जो है श्रोतों वो डायनासोर नामक स्थान तक पहुंचकर ग्लेशियर झील का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर झील की स्थिति, आसपास के क्षेत्रों तथा जोखिम वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अभियान में श्रोताओं बताना चाहेंगे, इस अभियान में तहसीलदार मुल्तान हरीश, DDMA प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, जल शक्ति एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा माउंटेनिंग की सर्च एंड रेस्क्यू टीम के प्रभारी जितेंद्र सहित लगभग 22 सदस्य टीम ने भाग लिया। श्रोतों, टीम ने ग्राम पंचायत पोलिंग क्षेत्र से जो है वो डायनासोर तक लगभग 14 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी ट्रैक पूरा किया। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद टीम मौके तक पहुंची और ग्लेशियर झील की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान झील के आसपास के क्षेत्र जल निकासी एवं जल प्रभाव की दिशा तथा निचले क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जो है वो आंकलन किया गया। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आपको इस गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। चलिए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, और जानकारियों का सिलसिला श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं जानकारी को, अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। उपमंडल अधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने बताया कि बड़ा बंगाल निवासी दुर्गम राम के पेट में तेज दर्द के कारण गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना क्षेत्रीय प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुई। श्रोतों, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा को दी। इसके उपरांत उपायुक्त कांगड़ा ने तीव्रता कार्रवाई करते हुए उपायुक्त चंबा के साथ बातचीत की और मरीज को सुरक्षित निकालने के लिए जो है वो आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने बताया कि पंकज महत के नेतृत्व में 13 सदस्य मॉनिटरिंग रेस्क्यू टीम को चंबा से बड़ा बंगाल भेजा गया। उन्होंने दुर्गम पर्वतीय मार्ग, प्रतिकूल मौसम तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बीच टीम ने साहस धैर्य और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए मरीज तक पहुंच बनाई। श्रोतों, प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने के बाद टीम ने मरीज को जो है वो इतने खतरनाक मार्ग से सुरक्षित रूप से जो है वो घरोड़ा तक पहुंचाया। इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, श्रोतों अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ये रेस्क्यू अभियान प्रशासन की तेजी, निर्णय क्षमताएं, विभिन्न जिला प्रशासनों के बीच बेहतर तथा रेस्क्यू टीम की कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। समय पर की गई कार्रवाई से मरीज को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना संभव हो सका। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पन की।

0: को तो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो गया है श्रोताओं वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
1: टीवी देखने बुलाएंगे?
3: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
4: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
4: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। शुक्ला जी
5: वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
6: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
1: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान

शुद्ध FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडी जो कि सचिन कपूर। आप बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। संतराल

0: बाद एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और आइए श्रोताओं, अंतराल के बाद अब लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को। आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि गीत संगीत की ओर, तो बिल्कुल श्रोताओं, अंतराल के बाद जो है वो इस गीत की ओर लेके चलते हैं श्रोताओं, और उसके बाद अन्य जानकारियां जो है वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। कुछ एक खास जानकारियाँ हैं जो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे श्रोताओं। आप सभी यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।
1: क्या मैं कह सकती हूँ कि मैंने ठीक कहा था ना,
2: मैं इन सब चीज़ों पर बोलते हैं जब वो कोई काम आपके

FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में। आइए जी कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और अगली कुछ खास जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में कांगड़ा वैली कार्निवल के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। श्रोताओं बैठक में कार्निवल के दौरान प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। श्रोताओं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी धर्मशाला में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं श्रोताओं, जिनमें देश व विदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों का प्रवास रहेगा। श्रोताओं ऐसे में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्निवल की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं श्रोताओं, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कार्निवल के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए विभागवार समितियां गठित करने तथा प्रत्येक समिति को स्पष्ट दायित्व सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी समितियां आपसी मेल भाव के साथ जो है वो कार्य करें और तैयारियों की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में आयोजन स्थल की साफ सफाई, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, मंच व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक व्यवस्था के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर तैयारियां निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कार्निवल के दौरान प्रकाशन, मैराथन, साइकिलिंग, एंटी चिट्टा नुक्कड़ नाटक, खेल गतिविधियों सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों तथा स्वयं सहायता समूह की सहभागिता से भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने संबंधित समितियों को इन कार्यक्रमों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। क्रिकेट स्टेडियम में कंसर्ट प्रस्तावित। श्रोताओं उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कांगड़ा वैली कार्निवल के शुभारंभ अवसर पर कंसर्ट आयोजन करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कंसर्ट में प्रवेश टिकट के माध्यम से होगा, इससे कार्निवल के आयोजन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में भी सहायता मिलेगी। श्रोताओं कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलेगा। आइए लेके चलते हैं इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मंडी शहर में काम के सिलसिले में रह रहे मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक पर पंजाब की रहने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जो है श्रोतों वो जांच शुरू कर दी है। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 0 FIR के रूप में जो है वो दर्ज होने के बाद मंडी की शहरी पुलिस चौकी को जांच के लिए जो है वो भेजा गया है। श्रोतों मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जो है वो SIT का गठन किया है। पीड़ित युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे शादी करने का भरोसा देकर अपने झांसे में लिया और शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी युवक के परिवार के सदस्य को भी थी। आरोपी युवक का परिवार काम के सिलसिले में मंडी शहर में रह रहा था, अब परिवार यहां से चला गया है। युवक उसका आईफोन भी ले गया है। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जो है वो SIT गठित कर दी गई है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही है। तो आइए श्रोताओं इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। जानकारियों का पिटारा यूं ही खोलते रहेंगे। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस फेरे से गीत की ओर।

तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर। तो आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। कुल्लू जिला के दुर्गम और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में अवैध भंग की खेती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रोतों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के दौरान अब तक 61 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उगाई गई अवैध भंग की फसल को नष्ट किया जा चुका है। श्रोतों अभियान में NCB के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य वन विभाग की टीम शामिल है। अवैध भांग की खेती को नष्ट करने के लिए संयुक्त टीम कुल्लू के ऐसे दूरदराज और ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रही है जहां पहुंचना सामान्य परिस्थितियों में भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। श्रोतों NCB, ITBP, पुलिस और वन विभाग की टीम अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ अभियान को आगे बढ़ा रही है। अभियान के दौरान जियो टेकिंग और फोटो वीडियोग्राफी के माध्यम से कार्रवाई के प्रत्येक चरणों का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। श्रोतों इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खोलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: वेलकम।
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं आप अपने अपने वीडियो सेट पर श्रोतो। तो आइए 7:45 हो चुके हैं श्रोतो और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
2: हमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया भाग, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को बताया बेबुनियाद। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की आवाज लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद आधार है और हर मतदाता को अपने वोट पर भरोसा हो, उसे अपनी पसंद चुनने का पूरा अधिकार मिले, ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 13 वर्षों से केंद्र में सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस में हताशा व निराशा है। ऐसे में अब देश में अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बनाकर सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर पूरे देश में घूमते हैं तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर देश विदेश में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं।
3: जो अराजकता का माहौल खड़ा करने की वो कोशिश करेंगे उसका कड़ा जवाब केंद्र की सरकार देगी और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसी चीजों को लेकर के कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलेगा और संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की वजह से। हम लोगों के बीच में बात कहेंगे, ये लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन जिस प्रकार की कांग्रेस के नेताओं की बनी पड़ी है, इसको एक्सपोज करना ये हमारा दायित्व बनता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है।
4: ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूट, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं।
2: प्रदेश के पूर्व मंत्री व 5 बार के विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकुटिया का आज सुबह कांगड़ा जिला स्थित उनके पैतृक गांव तियारा में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मेजर विजय सिंह मनकुटिया का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सेना में सेवाएं देने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। मेजर मनकुटिया अपनी बेबाक राय और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेजर विजय सिंह मनकुटिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार सहित अन्य नेताओं ने भी मेजर विजय सिंह मनकुटिया के निधन पर गहरा शोक जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
0: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
5: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th-6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th-8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
0: राष्ट्रीय मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत आकांक्षी जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। चंबा में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजीव भारद्वाज ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
8: केंद्र सरकार की ओर से जो धन उपलब्ध कराया गया है उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, उसके विषय में आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू हो गया है। उसमें जितनी योजनाओं की मैंने स्वीकृति दी थी सांसद के नाते कि विभाग में करीब करीब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई।
2: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल तकनीकी क्षेत्र में निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है और राज्य में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और ITI संस्थानों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि प्रशिक्षुओं को नवाचार के अवसर मिल सके। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के लिए 35 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा नेतृत्व आधारित विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने कांगड़ा जिले के आपदा प्रभावित बोह घाटी का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय दल ने धर्मशाला में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने केंद्रीय दल को जिले में मॉनसून के दौरान हुए जानमाल के नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने केंद्रीय दल से प्राकृतिक आपदा के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के मापदंडों में संशोधन की सिफारिश करने का आग्रह किया ताकि राज्यों को और अधिक सहायता मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया भाग, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को बताया बेबुनियाद। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी की 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और इसी के साथ आप अपने आरजे सचिन कपूर को भी दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेड़ी गुंजन के साथ यूं ही सफ़र को काटते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: देख, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
7: ए छोड़ो, रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
8: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
7: क्यों?
8: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
9: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
10: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
11: वही असली तरक्की।
10: एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
2: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
3: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: एकदम।
5: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
6: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
7: जुबान।

गजल भी मैंने अर्ज किया था ना, कुछ मेरी तरफ से मेरी फरमाइशों पर सुन लें, कुछ फिर आपकी फरमाइशें मेरे सर माथे पे कुछ सुनाऊंगा। ये भी नई गजल है, आगा बिस्मिल की ये गजल है।

गजल पेशी खिदमत है आगा बिस्मिल गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह, तो अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा बीच में, उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा, ये वादा रहा, मगर गौर की जरूरत है।

चीज ऊपर वाले की ये देन है, उसकी मेहरबानी से है, अल्लाह की मेहरबानी से। 3 ऑक्टेव्स जिसको हम अपनी मौसीकी की जबान में सब तक कहते हैं, ये सब तक होती है 1 2 3, तो ये पूरी एक जैसी आवाज सुनाई।

नमस्कार 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एशियाई खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को मिलेगी पुरस्कार राशि। बीपीएल चयन में अब परिवार पहचान आधार नहीं होगा। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पाबंदी। पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा। ग्राम सभा में विकास कार्यों का रोड मैप तैयार होगा। इसी के साथ अब समाचार विस्तार से।

जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों पर प्रदेश सरकार धनवर्षा करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार पुरुषों की मॉडर्न पेंटाथलोन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सावन वरवाल को 2.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की हिमाचली खिलाड़ियों पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी कर रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 4 करोड़, रजत पदक के लिए 2.5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। सरकार ने ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था की जानकारी दी है। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के चयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब परिवार पहचान के आधार पर किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या हटाने का फैसला नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ग्राम सभा द्वारा तय की गई पात्रता के आधार पर बीपीएल सूची तैयार की जाएगी। विभाग के अनुसार परिवार पहचान प्रक्रिया और बीपीएल सूची प्रक्रिया दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या अपात्र पाए जाने पर सूची से बाहर करने की प्रक्रिया ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर होगी। बताया गया है कि परिवार पहचान के बाद भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं बीपीएल पात्रता के लिए अपात्र पाए गए परिवारों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के लाहौल स्पीति दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन तथा मानव रहित हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, रिवर राफ्टिंग और अन्य संबंधित पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी निर्धारित अवधि के दौरान अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के आसपास अस्थायी और स्थायी रूप से लगाए गए दुकानदारों तथा अन्य संबंधित लोगों को अपनी व्यवस्थाएं हटाने और कब्जे वाले स्थानों को 30 सितंबर तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पुलिस और वन विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी 3,758 पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान गांवों में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभाओं में गांव की स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को लेकर ग्रामीण अपने सुझाव दे सकेंगे। ग्राम सभा में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर भी चर्चा होगी। स्थानीय स्तर पर नशे की समस्या से निपटने के लिए जागरूकता गतिविधियों और सामुदायिक भागीदारी पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में केवल विकास योजनाओं पर ही चर्चा नहीं होगी बल्कि पंचायतों में पहले से चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। विभाग ने पंचायत सचिवों और संबंधित अधिकारियों को ग्राम सभा की सूचना समय पर ग्रामीणों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है ताकि गांव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक रूप से चर्चा
की जा सके। सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर ने पुरुषों के लिए सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 180 पद भरने जा रहा है। इसके लिए साक्षात्कार 3 अक्टूबर 2026 को एसडीएम ऑफिस कैंपस शाहपुर, 5 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय ज्वालाजी, 6 अक्टूबर को उपरोजगार कार्यालय नगरोटा वगवा, 7 अक्टूबर को नूरपुर, 8 अक्टूबर को इंदौरा और 9 अक्टूबर को पालमपुर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 19 से 40 वर्ष की आयु के बीच 10वीं उत्तीर्ण व इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 18,500 से 24,000 रुपए प्रतिमाह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएंगी। जिला दंडाधिकारी हेमराज वैरवा ने जिला कांगड़ा में मांस और पके हुए भोजन की वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में जारी एक अधिसूचना के अनुसार बाजार में आम जनता या उपभोक्ताओं को उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये दरें निर्धारित की गई हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी विक्रेता इससे अधिक दर वसूल नहीं कर सकेगा। मीट बकरा या भेड़ का 600 रुपए प्रति किलो, मीट सुअर का मीट 300 रुपए प्रति किलो और चिकन 240 रुपए प्रति किलो, मछली बिना तली हुई 240 रुपए प्रति किलो, तली हुई मछली 340 रुपए किलो और इसी प्रकार से जो है खाने की चीजों को पे भी निर्धारित शुल्क जो है वो लगाया गया है। उनका कहना है कि दूध लोकल सप्लाई 60 रुपए प्रति लीटर, उबला हुआ दूध लोकल सप्लाई 70 रुपए प्रति लीटर, पैक्ड दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 90 रुपए और स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 360 रुपए बेचा जाएगा। सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें और निर्धारित दरों के अनुसार ही वसूली करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी?
4: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
5: दस दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
7: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
8: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
9: ए छोड़ो रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
10: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
10: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब देखो शुक्ला जी आ गए।
11: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
12: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर।

0: क्या हुआ?
1: अरे इसे क्या हुआ?
2: सांप ने काटा, सांप ने।
3: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
4: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
3: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालेंगे।
5: अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: एकदम।
7: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
8: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
9: जुबान।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: या प्यास अधूरी रह जाएगी

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
2: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
3: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
4: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
1: ए छोड़ो रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
1: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
9: वही असली तरक्की।
8: एक कदम स्वच्छता की ओर।
10: मुझे उड़ना

0: अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले
4: क्या? अरे रुको रुको रुको, मतलब अस्पताल जाने के अलावा अब सब कुछ कर लेंगे। अरे जल्दी से इसको अस्पताल लेके जाओ। इन्हीं सब के चक्कर में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए। तो याद रखिए, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
4: एकदम।
6: सुबह उठते ही फोन देखने की आदत आपकी जिंदगी पर क्या असर डालती है? एक बात पूछूं, सुबह आँख खुलते ही तुम्हारा हाथ सबसे पहले फोन की तरफ क्यों जाता है? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पूरे दिन के विचारों को प्रभावित कर सकती है। सुबह का समय बहुत शांत होता है, उस समय मन को अच्छे विचार देने चाहिए। लेकिन अगर आँख खुलते ही तुम फोन में लग जाते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत मैसेज, नोटिफिकेशन और रील्स में चला जाता है। फिर धीरे धीरे मन को हर थोड़ी देर में फोन देखने की आदत हो जाती है। तुम कोई काम कर रहे होते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि फोन मत चलाओ। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, ईश्वर को याद करो और सोचो कि आज तुम्हें क्या अच्छा करना है। उसके बाद अपना फोन देखो। याद रखना, जिस तरह तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो उसी तरह तुम्हारे विचार भी धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए कल सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहले स्क्रीन मत देखना, पहले अपने मन को समय देना, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारे पूरे दिन को दिशा देता है।
7: मैं ना रोज रोज की इन लड़ाइयों से थक चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी क्या चीज दान करूँ कि घर में सुख शांति आ जाए।
8: जुबान।

कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।